0: मिठाइयों के डब्बे लेके घूम रहा था पूरे पूरे नेबरहुड में। सो एक जो रिसर्च हुआ उसने ये कहा कि भाई वेरी सिंपली पुट, मेन आर सिंपल, दे हैव सिंपल रिक्वायरमेंट्स इन लाइफ, ठीक है, इतना ज़्यादा लोड नहीं लेते। मतलब लड़की सोच रही है मैं सक्सेस फेलियर के साथ कैसे डील करूँगी लाइफ में, मेरा क्या होगा, मेरे तो मतलब सिर्फ 90 आए हैं एंड थिंग्स लाइक दैट, और रोए जा रही है रोए जा रही है। और वो आ रहा है, क्या हुआ इसको, क्या हुआ, क्यों रो रही है, खुश है, मिठाइयाँ लेकर घूम रहा है, टू क्यूट या। What do you think about this?
1: भाई ना अगले जन्म बेटा ही की जो टाइप वाली फीलिंग इसमें भी आती है।
0: एग्जैक्टली, और कह रहे हैं कि 60% विल बी हैप्पी फॉर लाइफ, मतलब क्योंकि उसको हर सिचुएशन में हंसना आता है। और जैसा कि हमारे अपने सोशल मीडिया पे इस हफ्ते हमने कहा था कि अगर आपको हंसना नहीं आता जिंदगी में तो हमको फोन करो 9151896 3, हम आप पे हंस देंगे, वी हैव नो इश्यूज विद दैट।
2: रेडियो मस्ती 24/7, डाउनलोड रेडियो मस्ती 24/7 ऐप टू कॉल अस इंस्टेंटली और ईमेल व्हाट्सएप टेक्स्ट अस फ्रॉम द ऐप।

0: हमारा कोई शो होता है सुपर हिट तो आप कहते हैं और रेडियो मस्ती 24/7 कहता है क्यों नहीं। Presenting the encore of your favorite shows. Another day, another time. For your listening pleasure only. Because super hits deserve a repeat. Check out the encore show schedule on our app menu.
1: Only on Radio Musty 24/7 Live. A part of Musty Media Network Singapore.

0: tuned into Radio Masti 24/7 Live, keeping the world Bollywood entertained anytime, anywhere.
1: गुड मॉर्निंग एंड वेलकम वंस अगेन. रेडियो मसी 24/7 पर मार्क्स की बात हुई थी अभी अभी, और गर्ल्स और बॉयज के थोड़े दिमाग में अलग तरीके से प्लेजर्स को डील करने की बात हुई थी. मार्क्स की एक और बात करूंगी थोड़ी देर में, लेकिन फिलहाल यहाँ पर अंतरा जी की खबर है और वो आज पूरी तैयारी से आई है.
2: मस्ती मैडनेस जहाँ न्यूज भी होती है.
3: अरे अभी आपने मार्क्स की बात की तो मुझे याद आया कि आई हैव दिस खबर आल्सो व्हिच इज काइंड ऑफ रिलेटेड टू इट. अब देखिए, लड़का हो लड़की हो, आपके मार्क्स कहीं ना कहीं ये मतलब दिखाते हैं कि आपने कितनी पढ़ाई की है. ठीक है, वो एक पैरामीटर आपका सेट हुआ रहता है. अब कुछ ऐसा हुआ, कभी कभी लाइफ में ऐसी यूनिक सी सिचुएशंस आती है, आपको पता नहीं वो उगलते नहीं बन रहा, निगलते नहीं बन रहा, करे तो क्या करे. इस बंदे के साथ भी कुछ ऐसा हुआ. सो ये जो हमारा पेशेंट है, इसकी तबीयत खराब हुई, ये हॉस्पिटल पहुंचा तो डॉक्टर साहब मिले. अब डॉक्टर साहब को देख कर इस बंदे को आया मतलब लग गया झटका, और वो सोच रहा है कि अब मैं इससे इलाज करवाऊ कि नहीं करवाऊ. वाई? Because he was the same guy, the doctor was the same guy who had bought leaked medical type A papers from him years ago.
1: तो उसको लग रहा है कि बेटा ये चीटिंग करके पास हुआ था, ये सच का डॉक्टर है.
3: मतलब और उसको समझ में नहीं आ रहा है, कहते मैं क्या करूं. डियर मस्ती, व्हाट शुड आई डू.
1: सारा का सारा शो मस्ती मैडनेस का अब डियर मस्ती में कन्वर्ट होता चला जा रहा है. एक्चुअली मुझे लगता है कि यहाँ जो नो फिल्टर वाली न्यूज है ना, इन सबका इलाज हम डियर मस्ती में निकालेंगे. यहाँ पर वी कैन ओनली शेयर द न्यूज, बट द फन इज जब हम इनको बताएंगे कि तुम्हें कैसे करना चाहिए था डील, क्या तुम्हारी प्रॉब्लम है ना. ऑन रेडियो मस्ती गाइस, डियर मस्ती जरूर सुनिए, बिकॉज एवरी ट्यूजडे 5 to 8 PM सीरियसली इट इज अ हेल ऑफ एन अमेजिंग शो, जहां पर दुनिया भर की प्रॉब्लम्स के सिंपल सॉल्यूशंस दिए जाते हैं. सॉल्यूशन तो क्या, एटलीस्ट देयर इज.
3: आप क्या करते हैं ऐसे सिचुएशन में?
1: ना जाती उसके पास, दैट्स फॉर श्योर. मुन्नी बदनाम हुई. कमिंग अप नेक्स्ट, इसीलिए.

0: अच्छा सुनो जरा, ग्रोसरी ना खत्म हो रही है तो 1 kg आटा,
1: हाँ जी जी,
0: आधा kg मसूर दाल,
1: जी जी,
0: काजू किशमिश, ओ हाँ, अरे वो नमकीन भी खत्म हो रहे हैं,
1: जी जी,
0: आर यू इवन लिसनिंग या ऐसे ही जी जी किए जा रहे हो?
1: अरे डार्लिंग, व्हाई टू फियर व्हेन जीजी मार्ट इज देयर?
0: क्या जी?
1: जीजी मार्ट, योर पर्सनल ग्रोसर, जस्ट लॉग ऑन टू ggmartonline.com, ग्रोसरी ऐड टू कार्ट करो, चेकआउट करो और ग्रोसरी एट योर डोरस्टेप।
0: वाजी, क्या बात जी?
1: Order today from GG Mart, your personal grocer. Doom. Doom.

0: मेरे मोस्ट रीसेंट इंटरव्यू में जो हाल ही में अनूप जलोटा जी के साथ हुआ था, उसमें एक सवाल उठा था कि भाई जब तुम्हें पद्मश्री मिल रहा है तो पद्मश्री के बाद में आप अपनी मम्मी माताश्री को फोन करते हो और माताश्री कहती हैं बेटा अब तो तू ढंग से गाना शुरू कर दे. दिस इज द सिचुएशन दैट अनूप जलोटा जी शेयर्ड विद मी. और मुझे उस टाइम अपने डैडी याद आए थे जो 100 में से 100 नंबर आते थे तो कहते थे कैन डू बेटर.
1: मस्ती मैडनेस ऑन रेडियो मस्ती 24/7.
0: इसीलिए हम कहते हैं मोटिवेशन ही खत्म हो गई उस टाइम.
2: That is so very true. I think that generation of parents, वो इसी तरह से उन्होंने devise कर रखा था एक formula कि बोलते रहो, ये मत बोलना कभी कि अब हाँ हाँ अभी ठीक है या enough हो गया अभी. ऐसे बोलते रहो कि वो लगा रहा है बंदा.
0: Very true.
2: देखो सभी लगे हुए हैं.
0: लगे हुए हैं. लेकिन ये सिर्फ उस generation की नहीं है. This musty madness radio musty 24/7 पर अजीबो गरीब खबरें. एक mother of a student in West Bengal. भाई okay. अब क्योंकि रिजल्ट्स की बात हो रही है, नंबरों की बात हो रही है, तो आईसीएसई का जब रिजल्ट आया हाल ही में तो 499 आउट ऑफ 500 इस बच्चे के आए. ओके. एंड ऑफ कोर्स ही गॉट ऑल इंडिया रैंक ऑफ नंबर 2. तो उसकी मम्मी जो कि एक स्कूल टीचर है, पूछा गया कि भाई हाँ जी आपको क्या लगता है 99.8% आए हैं, 499 आउट ऑफ 500 आए हैं, व्हाट डू यू हैव टू से. वाओ, शी सेज आई एम सैड. She said, I am sad. It would have been better if he had scored one more mark. ऐसे बोला उसकी माँ ने. अगर ये थोड़ा और पढ़ा होता तो आज मैं दुखी नहीं होती उस एक नंबर के पीछे. मतलब ये माँ के सेंटिमेंट्स हैं. क्या कहना चाहोगी तुम? बेटे से पूछा, तुम्हारी माँ तो बहुत दुखी है. तो कहता है, आई फील बैड कि मैंने एक नंबर लूज किया, लेकिन ठीक है, मैंने ठीक ही किया है, कोई प्रॉब्लम नहीं है.
2: भाई देखो, बड़ाओं का ये लड़का थोड़ा मतलब स्टेबल समझदार इंसान बनेगा, दैट बिकॉज ही इज नॉट लाइक गिविंग इट दैट मच तवज्जो एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम. अगर तो इसने कह दिया होता कि नहीं जो मेरी मम्मी कह रही है वही ठीक है, तो फिर तो बहुत ही प्रॉब्लम थी.
0: कुछ लोग जो ऑब्वियसली ट्रोल कर रहे हैं उस न्यूज को, वो लिखते हैं कि दिस इज वन रीजन व्हाई योर सन इज नॉट टॉकिंग टू यू इन योर ओल्ड एज, प्लीज रिमेम्बर.
1: You're tuned into Radio Masti 24/7 Live, keeping you connected anywhere, anytime, the Desi way.
3: तोहरी लचके जब कमरिया हसारा.

0: 40% off. 40% joy alukas.
1: 40% off. Oh my god. Let's go. Let's go.
2: Offer aisa ki aap bhi khud ko rok nahi payenge. Soon, soon, baba, soon, soon, baba, soon, soon, soon. Joy Alukas laya hai the biggest jewelry sale. Flat 40% off on making charges for gold, diamond, polki and precious jewelry. And 100% value on diamond exchange. Offer valid till 14 June 2026. Visit 412-134 and 320 Serangoon Road. Joy Alukas, the world's favorite jeweler.
3: रेडियो मस्ती 24/7 लाइव पर मैं हूँ अंतरा आपके साथ।
4: मैं आरजे अनुपर मस्ती मॉर्निंग शो पर आपके साथ।
5: लीजिए समर आ गया है लेकर यादों का कारवां।
3: आपने इनकी आवाज तो सुनी है, अब क्या आप अपनी आवाज अपने ही शो के जरिए हमारे लाखों लिसनर्स तक पहुंचाना चाहेंगे? स्टेज फियर को भगाना हो या पैशन को आगे बढ़ाना हो, इट्स इम्पोर्टेंट टू स्टार्ट विद द राइट ट्रेनिंग। The RJ Academy at Masti Media Network is now open for you. That too with a hybrid model for your convenience. 12 hours training per level. Flexible, individual focused syllabus offered for 14 years old and above. Selected trained voices to get an opportunity to host live on Radio Masti 24/7. Email a brief intro to info@radiomasti.com.sg requesting for an application form.

0: रेडियो मस्ती 24/7। जी हाँ, यहाँ पर ऊंची है बिल्डिंग, क्या बात है, क्या गाना है, क्या धमाल है सुबह सुबह ऑन मस्ती मैडनेस।
1: मस्ती मैडनेस जहाँ न्यूज भी होती है गैस्ट्रोनॉमिकल।
2: हाँ जी हाँ जी, तो मैं सोच रही थी कि मैं इसको किस तरह से बोलूं, बट हम बिल्कुल सामान की बात करेंगे, हम बंदों के सामान की बात करेंगे यहाँ पर, ठीक है। तो कुछ ऐसा था कि हमारा ये जो बंदा है, तो 2014 में इसको हुआ था भयंकर एक इन्फेक्शन ऐसी एक जगह नीचे वाले सामान पे, ठीक है। अब डॉक्टर ने कहा कि यू नो, अब बिकॉज अगर तो तुमने सामान को अभी भी बॉडी से अटैच रखा तो फिर ये पूरा इन्फेक्शन तुम्हारी पूरी बॉडी में फैल जाएगा, विच इज नॉट एडवाइजेबल, तो इसको अलग करना पड़ेगा। नाउ इट्स अ बिग डील, राइट, सामान अलग करना, इट्स लाइक अ ह्यूज ह्यूज थिंग। तो ये बंदे ने कहा कि चलो अब मतलब इसमें तो जान की बात आ गई है, तो तुम कर तो दो, बट मैं नहीं चाहता कि ये बिल्कुल ही मेरे से अलग ही हो जाए, मतलब कहीं ना कहीं तो इसको मेरे साथ, मेरी बॉडी के साथ जो है एडजस्ट करना ही करेगा। 6 साल, ओके, दिस बंदा हैड बीन ट्राइड डिफरेंट पार्ट्स अपने बॉडी के अलग अलग जगह पे उस सामान को अटैच कर करके देखने के लिए कि कहाँ पे सबसे ज्यादा फीजिबल कंपैटिबल है। फाइनली इट वाज हिज आर्म।
0: अच्छा, जहां पर
2: आर्म में वो अटैच कराया, जहां पे वो पनप रहा है
0: अपना प्राइवेट पार्ट,
2: सो वो अपना सामान अपने आर्म अटैच करके आज की जिंदगी वो जी रहे हैं। या
0: नहीं अंतरा, दिस हैज टू बी फेक न्यूज, ये हो ही नहीं सकता। मतलब मेडिकल चैलेंज कर रहे हैं यार, जहां पर हमारा जो सामान लगा है शरीर में वो वही ठीक है, नहीं तो वो कटता है तो कहीं और कौन फिट करता है, ये थोड़े कि नाक नीचे लगा देते हैं, तुम सोचो।
2: आई हैव नो आइडिया, मतलब अब ये जो बंदा है उसके जो फोटो डाली हुई है वो भी AI जनरेटेड हो सकती है, बिकॉज आजकल बहुत मुश्किल है बताना
0: एब्सोल्युटली
2: कि क्या सही है क्या गलत है, मतलब द वे थिंग्स आर गोइंग ऑन।
0: हाँ, लेकिन इस पूरी की पूरी अटैचमेंट पे वी कैन हैव अ सेपरेट शो ऑब्वियसली, बिकॉज उसको कवर कैसे करना है, उसको दिखाना कैसे है, उसका इस्तेमाल कैसे करना है और उसके बारे में कैसे ध्यान रखना है, इन सबको देखते हुए आई एम जस्ट थिंकिंग अगर उसको किसी से प्यार हो गया तो उसका इस्तेमाल कैसे, मैं अभी तो गाना ही चला देती हूँ।
3: Radio Musti 24/7. Download Radio Musti 24/7 app to call us instantly or email, WhatsApp, text us from the app.

0: सिंगापुर बोर हो गए हो क्या? अब टेंशन और बोर्डम होने वाला है फुल ऑन डिसअपीयर,
1: क्योंकि आ रहा है मस्ती हैंगआउट विद आरजे मुग्धा। गॉसिप का ओवरलोड, एंटरटेनमेंट का धमाका और दुनिया भर की खबरों का तड़का।
0: सीधी न्यूज तो सब देते हैं, ये शो देता है टेढ़ी न्यूज विद सार्कैज़म की टॉपिंग और मस्ती की क्रीम। गारंटीड मूड होगा हाई, इमेजिनेशन होगी फ्लाई और आप हंसोगे बिन वाईफाई।
1: तो सिंगापुर गेट रेडी फॉर योर डेली लाफ्टर डोज। मस्ती हैंगआउट विद आरजे मुग्धा ओनली ऑन रेडियो मस्ती 24/7 लाइव।
0: For show timings, check out the Radio Masti 24/7 Live app. RJ Mugdha ke saath. Gossip bhi, masti bhi, sarcasm bhi. Sab kuch sirf Masti Hangout.
2: Some stories are easy to tell. Par kuch kahaniyan dil ke andar hi reh jaati hain. Ek choti si baat par parents se duri. Ek pyaar jo kabhi keh nahi paaye. या वो करियर डिसीजन जो आज भी रातों की नींद चुरा लेता है। ऑन मस्ती मीडिया नेटवर्क, वी आर ओपनिंग अ सेफ स्पेस, डियर मस्ती, दिल से, जहां आप लिख सकते हैं वो सब जो आप कह नहीं पाते। हर हफ्ते हम पढ़ेंगे आपके अनोनिमस लेटर्स और कभी कभी एक गाना कह देता है वो बात जो लफ्जों में नहीं होती। बिकॉज समटाइम्स रेडियो पर बैठा एक अनजाना इंसान आपको दुनिया से ज्यादा समझ लेता है। सो राइट टू अस, डियर मस्ती, दिल

0: Hit us on the gram. It's Radio Musty 24/7. And don't forget to like our ever buzzing Facebook page, Radio Musty 24/7 Singapore.
1: Check it out.
2: अब आप ये सोचिए कि आज के जमाने में दहेज नाम का जो शब्द होता है उसको तो सभी हाथ लगाने से डरते हैं, लेकिन इन व्हाट अदर क्रिएटिव वेज आर दहेज टाइप ऑफ बिजनेस स्टिल कैरीड आउट। गुड मॉर्निंग एंड वेलकम, दिस इज मस्ती मैडनेस।
3: क्रेजी दुनिया, क्रेजी खबरें और हमारा ये क्रेजी शो, दिस इज मस्ती।
4: बाय गॉड की कसम, मतलब क्या ही आपने कौन सा वर्ड यहाँ पे बोल दिया। आजकल इतने, मतलब दो तीन हाल ही में केसेस चल रहे हैं सेम विद द डाउरी इन इंडिया। ओ माय गॉड, इट हैज बीन देयर ऑन द टॉप ऑफ माय माइंड।
2: बिल्कुल बिल्कुल, जी पिछला अभी इसी हफ्ते में जो 12th of May पे जो वो त्विशा शर्मा की बात हो रही थी, काफी ज्यादा चैनल्स ने, और रिपब्लिक हैज डन एन अमेजिंग जॉब। मतलब मैं तो अर्नब गोस्वामी की बहुत बड़ी फैन हो चुकी हूँ, तो उस तरह से ऑफ कोर्स दहेज इज ऑब्वियसली वन ऑफ द वेरी बिग रीजंस दैट स्टिल देयर आर ब्राइडल डेथ्स इन इंडिया। लेकिन मैं इस बात को मस्ती मैडनेस के ढंग में कन्वर्ट करना चाहूंगी। तो हाल ही में एक दूल्हे जी ने बोला कि भाई उनको चाहिए ब्लैक महिंद्रा स्कॉर्पियो गिफ्ट में शादी पर। सो अब वो दहेज नहीं होता, अब वो गिफ्ट होता है जो आप हमसे मांग सकते हो, क्योंकि आपकी खुशी के लिए और आपकी बेटी की खुशी के लिए एक वो गिफ्ट बड़ा जरूरी है। तो एक छोटी सी ब्लैक महिंद्रा स्कॉर्पियो। अब बजट कॉन्स्ट्रेंट्स थे तो ब्राइड की जो फैमिली है उन्होंने सरप्राइज किया उसको एक टॉय वर्जन देके शादी के टाइम पर। सभी कैमरास और सभी जो रस्में हो रही थी उसके बीच में एक टॉय आया स्कॉर्पियो का और उनके हाथ में थमाया गया। अब क्या है कि ऑब्वियसली गेस्ट हंस रहे हैं, सोशल मीडिया पर ये पूरा का पूरा सटल मैसेज जा रहा है कि हम, मतलब हम जितना अफोर्ड कर पाए अपनी तरफ से हम बेस्ट कर रहे हैं। सो या इट्स अ ग्रेट टेक, लेकिन ये सोच कि फिर भी शादी उसी आदमी से हो रही है तो बाद में वो क्या हाल करेगा उस लड़की का, ये भी हमें समझ में आती है।
4: मतलब मेरे को ये समझ में आ रहा है इस सिचुएशन में कि यू एक्चुअली डेड, तुम टॉय कार लाए क्योंकि तुमको उसको जवाब देना था, ठीक है, उसके बाद भी तुमने अपनी बेटी उधर भेज दी।
2: exactly.
4: मतलब I really did not get the math.
2: Exactly. और तुम पूरे सोशल मीडिया पर ये चीज दिखा रहे हो कि इसने ये मांगा था, हमने ये दिया इसको, एंड तुम सोच रहे हो कि शादी के बाद वो चुप रहेगा। मतलब दिस इज लाइक प्रोवोकिंग, रादर देन दैट व्हेन यू नो द औकात ऑफ अ पर्सन जस्ट स्टॉप, डू नॉट

0: तीसरे घंटे में एंटर करते हुए चार चार चीजों की बात करेंगे.
1: एंटर कर रहे हैं हम. लेट्स एंटर द थर्ड टाइम, थर्ड आवर.
2: क्रेजी दुनिया, क्रेजी खबरें और हमारा ये क्रेजी शो. दिस इज
1: गुड मॉर्निंग एंड वेलकम वंस अगेन. जी हाँ, बिल्कुल फ्राइडे है, फ्राइडे की फीलिंग दे रहे हैं आपको. शाम का क्या प्लान है?
0: देखिए, जब सुबह आती हूँ तो मैं तैयार होती हूँ. बाय द एंड ऑफ द शो, थर्ड आर में घुसने लगते हैं तो फिर रेणुका एकदम तैयार हो जाती है. मतलब हम कभी भी आपको छोड़ेंगे नहीं. वी विल ऑलवेज टाई लास्ट.
1: ओके,
0: यस,
1: खबर.
0: हाँ जी, तो कुछ ऐसा है कि चार चार बीविया एक ही दिन में. ओनली फ्यू मेन आर दैट लेवल ऑफ लकी. तो भाई, ये बंदे का जो ये सपना पूरा हुआ, इसने शादी की चार चार बंदियों से एक ही दिन में. अब बंदा फुल एक्साइटेड कि आज तो और मजे आएंगे. लाइक इट इज लाइक रॉक एंड रोलर टाइप एकदम फीलिंग करके स्टड बन के फर्स्ट वाली बीवी के पास गया. फर्स्ट वाली बीवी के साथ जब वो गया कुछ करने के लिए, तो उसकी डिस्कवरी से उसको लगा पहला झटका. तो उसकी फर्स्ट बीवी निकली ट्रांसजेंडर.
1: ओके,
0: तो उसने कहा कोई बात नहीं, हमारे पास तो तीन और.
1: हाँ, क्या बात है, मतलब हम तो फोन अ फ्रेंड कर सकते हैं, हमारे पास तो तीन तीन लाइनें हैं.
0: तो हम दूसरे के पास गए. कमाल की बात ये हो गई कि दूसरी वाली भी वही निकली, तीसरी और चौथी वाली भी नहीं. तो मतलब एक ही बार में, एक ही रात में बेचारे को बैक टू बैक कई सारे सदमे जो है, बिल्कुल इतने सारे ऑप्शंस होने के बावजूद सर हमारे कुछ ना कर पाए.
1: ओहो, मतलब सब्ज बाग दिख रहे थे और फिर उफ, हर जगह रेत ही रेत. और कर, अब चार शादियों को कर, अब डिवोर्स देने में और एलिमनी देने में बाकी की जिंदगी निकल जाएगी. भाई, तुम्हारा सामान तो बिल्कुल अनयूज्ड रह जाएगा, इतना हम बता सकते हैं. रेडियो मस्ती 24/7 पर छोटा सा म्यूजिकल ब्रेक एंड देन वी विल कम बैक एंड से कि हस्बैंड्स का एक्सचेंज ऑफर कैसी रही है. न्यूज सुनते साथ साथ.

0: आई कैन नॉट स्लीप।
1: रेडियो मस्ती 24/7 लाइव पर मैं हूँ अंतरा आपके साथ।
2: मैं आरजे पर मस्ती मॉर्निंग शो पर आपके साथ।
3: लीजिए समर आ गया है लेकर यादों का कारवां।
1: आपने इनकी आवाज तो सुनी है, अब क्या आप अपनी आवाज अपने ही शो के जरिए हमारे लाखों लिसनर्स तक पहुंचाना चाहेंगे? स्टेज फियर को भगाना हो या पैशन को आगे बढ़ाना हो, इट्स इम्पोर्टेंट टू स्टार्ट विद द राइट ट्रेनिंग। The RJ Academy at Masti Media Network is now open for you. That too with a hybrid model for your convenience. 12 hours training per level, flexible individual focus syllabus offered for 14 years old and above. Selected trained voices to get an opportunity to host live on Radio Masti 24/7. Email a brief intro to info@radiomasti.com.sg requesting for an application form.

0: Hit us on the gram. It's Radio Musty 24/7. And don't forget to like our ever buzzing Facebook page, Radio Musty 24/7 Singapore.
1: Check it out.
2: हम जितनी कोशिश करें ये बोलने की कि भाई अब मस्ती मैडनेस अपने अंत पे पहुंच रहा है, कुछ ही और शोज होंगे फिर हम खत्म कर देंगे इसको, क्योंकि हमें खबरें नहीं मिल रही दुनिया से, लेकिन ऐसा कभी नहीं होगा, कभी नहीं होगा. अंतरा पानी पियो, घबराओ मत.
3: मस्ती मैडनेस जहां न्यूज भी होती है गैस.
4: इनका छोड़ो, मैं ही शौक में आ रही थी कि मैंने क्या बात कर रही हूँ. अरे ऐसे कैसे भाई, टू बी वेरी ऑनेस्ट, मस्ती मैडनेस इज समथिंग आई लुक फॉरवर्ड टू पूरे हफ्ते में, कि भाई फ्राइडे सुबह एकदम ये 3 घंटे जो मस्त डिस्ट्रेस होता है ना, बाकी सब चीजों से ये बातें करते करते बहुत ही मजे आ जाते हैं.
2: बिल्कुल सही बात है. और मुझे लगता है कि मस्ती मैडनेस का एक AVI स्पेशल होना चाहिए, हमेशा महीने में एक बार तो होना ही चाहिए. क्यों अंतराजी प्रोग्रामिंग हेड जी,
4: क्यों क्यों लोग देखना चाहते हैं कि मैं कैसे यहाँ पर, क्योंकि आजकल मुझे यहाँ पे हंसा कम करो, मैं उसमें मतलब गिर पड़ रही होगी. आप विजुअली मेरे को देख रहे होगे कि म्यूट होके कोई इंसान कैसे नीचे रोलर अप्पा कर रहा होता है.
2: नहीं, हमारे शो का अभी लाइव शो का नहीं, लेकिन अलग से एक होना चाहिए AVI मेरे ख्याल से, जहाँ पर हम 2-3 चुनी हुई जो खबरें हैं अजीब अजीब सी, वो हमें सबके साथ में शेयर करनी चाहिए, उनके व्यूज लेने चाहिए, सिर्फ हमारा व्यू क्यों हो. अब जैसे कि एक्सचेंज ऑफर की मैंने अभी भी बात करी, अब दो बहनें मध्य प्रदेश के हाई कोर्ट ग्वालियर ब्रांच में गई और उन्होंने कहा वो लीगली अपने हस्बैंड्स को एक्सचेंज करना चाहती हैं, क्योंकि वो दोनों खुश नहीं थी अपनी शादियों में. ठीक है, अब अजीब सी बात ये हुई कि एक औरत के हस्बैंड ने ये पिटिशन फाइल करी कि उसकी जो साली है, जो सिस्टर इन लॉ है, उसने उसकी बीवी को एबडक्ट कर लिया है. लेकिन जब उसकी बीवी कोर्ट में आई तो उसने कहा कि मैं तो अपने जीजा जी के साथ में रह रही थी बाय चॉइस. सो देन दोनों औरतों ने अपनी अपनी पिटिशन दी कि हम दोनों बहुत दुखी हैं अपने अपने पतियों के साथ में, लेकिन हम दूसरे के पति के साथ खुश हैं. तो क्या हम स्पाउस स्वॉप कर सकते हैं लीगली? अब कोर्ट थोड़ा परेशान हो गया कि ये जो वाइफ स्वॉपिंग और ये सब के केसेस होते हैं, ये तो काफी मतलब बाहर छुप छुप के होते हैं ना, कोई कोर्ट में आने की हिम्मत नहीं करता ये बोलने के लिए कि भाई साहब ऐसा है, हम स्वॉप कर सकते हैं, आप लीगली हेल्प करोगे क्या?
4: It is like going to the principal, may I talk in the class? Give me permission. मैं को क्लास में बात करनी है, बस परमिशन दे दो.
2: तो जज ने जाके लोकल पुलिस को बोला इन औरतों को सिक्योरिटी दो 6 महीने के लिए, काफी सेंसिटिव फैमिली डायनामिक्स हैं इनके.

0: अच्छा सुनो जरा, ग्रोसरी ना खत्म हो रही है, तो 1 kg आटा,
1: हाँ जी जी,
0: 1/2 kg मसूर दाल,
1: जी जी,
0: काजू, किशमिश, ओ हाँ, अरे वो नमकीन भी खत्म हो रहे हैं,
1: जी जी,
0: आर यू इवन लिसनिंग, या ऐसे ही जी जी किए जा रहे हो?
1: अरे डार्लिंग, व्हाई टू फियर व्हेन जी जी मार्ट इज देयर?
0: क्या जी?
1: जी जी मार्ट, योर पर्सनल ग्रोसर, जस्ट लॉग ऑन टू ggmartonline.com, ग्रोसरी ऐड टू कार्ट करो, चेकआउट करो और ग्रोसरी एट योर डोरस्टेप।
0: वाह जी, क्या बात जी।
1: ऑर्डर टुडे फ्रॉम जीजी मार्ट, योर पर्सनल ग्रोसर।

0: वेलकम बैक मस्ती मैडनेस, जो कि आप सुबह सुबह से एंजॉय कर रहे हैं रीड गौर अंतरा के साथ। आइए और आगे और अतरंगी बातों की तरफ लेके चले
1: मस्ती मैडनेस, जहां न्यूज भी होती है
2: गैस्ट्रोनॉमिक खबरों की एक ही वन स्टॉप शॉप, जहां पर दुनिया भर की अजीब अजीब सी खबरें। माय गॉड, व्हाट काइंड ऑफ न्यूज हैव वी टॉक्ड सिंस मॉर्निंग। एक तरफ से दूसरी तरफ, उफ कमाल। हमारी लाइफ कितनी बोरिंग है इनके सामने।
0: सीरियसली आप ये सोचो, ठीक है, अब आपको मैं भारतवर्ष में मेरठ लेकर चलती हूँ, ठीक है। अब क्या होता है कि जब आपका बड़ा बैड फेस चलता है, तब आपको समझ में आता है कि आपकी जिंदगी में कौन कौन है जो आपके लिए बहुत ही ज्यादा केयर करता है, राइट। तो ये जो हमारा एक बंदा है, इसको थाने में पकड़ के ले जाया गया, ठीक है। अब जब उसका बैड फेस आया, थाने में चला गया, अब उसकी बेल कराने के लिए एक नहीं, अचानक से दो बीवियां बेल कराने के लिए थाने पहुंची।
1: ओह वाओ, ओके।
0: दोनों बीवियों को पता नहीं था, दोनों बीवी अपनी अपनी पतिव्रता वाली फीलिंग लेकर पहुंची वहां पर।
1: हाउ स्वीट।
0: वहां पर जाके उन्होंने रियलाइज किया कि वो सेम ही आदमी को बेल कराने के लिए वहां पर पहुंची हुई है।
2: औरत का कोमल हृदय।
0: हाँ, the twist of the whole story was कि भाई इन दोनों बीवियों के बीच में हो गई हाथापाई, मतलब नोचा नोची बाल पकड़ झगड़ा सॉलिड।
1: हाँ।
0: कि मेरा पति है, मेरा पति है, तू ये तू वो फलाना ढिमका। तो भाई पति की तो बेल हो गई एक्सेप्ट। हाँ। पति आ गया बाहर। हाँ। ये दोनों थाने के सामने राइट रकस क्रिएट करने के लिए दोनों की दोनों हो गई अंदर।
3: निकला और गड्डी लेके,
2: वाह, गदर 2 के साउंड ट्रैक से मैं निकला गड्डी लेके।
0: भाई बहुत ही, मतलब इसको कहते हैं किस्मत लेकर आना।
2: सीरियस,
0: मतलब जो बाल मतलब बाल के हिसाब का बचा है ना ये आदमी, मतलब
2: कोई नहीं,
0: या तो ये पिट जाता बाहर निकल के। तो बट भगवान जी का ट्विस्ट आप देखें कि दोनों अंदर ये बाहर।
2: बेटा एक बात पक्की है, मुर्गे की माँ कब तक खैर मनाएगी,
0: कब तक खैर
2: आएगा तो? आएगा कभी तो आएगा वो दिन जब ये दोनों बाहर आएंगी और ये कहाँ जाएगा, इसको सोचना है।
4: Radio Musty 24/7 Live, a part of Musty Media Network Singapore. Check it out.

0: मॉर्निंग शो तो नहीं है, लेकिन आज हम मस्ती मैडनेस में ही आपको सोल लेके चलते हैं। जी हाँ, जहां पर एक मई की शुरुआत में हंड्रेड्स ऑफ लोकल सोलाइट्स वो आए हान रिवर पर, क्योंकि उनको सिटी की गवर्नमेंट ने बुलाया था कि भाई तुम बहुत ओवरवर्क्ड हो, आओ हम तुम्हें सोला दें।
1: क्रेजी दुनिया, क्रेजी खबरें और हमारा ये क्रेजी शो, दिस इज
2: तुम्हें सोला दे, लाइक लिटरली सोला दे।
0: यस, सुला दे मतलब हमेशा के लिए नहीं, लेकिन सिर्फ बिकॉज तुम बहुत ओवरवर्क्ड हो, बहुत ज्यादा काम करते हो। तो भाई सोल की जो मेट्रोपॉलिटन गवर्नमेंट है, उसने तीसरा एनुअल स्प्रिंग इवेंट अभी May 2 को ही करा, एंड दिस वाज डब्ड अ पावर नैप कॉन्टेस्ट। मतलब दोपहर के 3 बजे से लेकर रिफ्रेश सेट ऑफ एडमिशन रिक्वायरमेंट थी फॉर वुड बी पार्टिसिपेंट्स, कि आप वो पहनेंगे जो आप रात को पहन के अच्छे से सोते हैं, कम टायर्ड, कम विद अ फुल बेली, एंड उसके बाद मतलब आप सोचो कि वहां पर, क्योंकि ये लोग इतने थके हुए होते हैं, बोलते हैं कि तुम इतना काम करते हो, मतलब एग्जाम प्रिपरेशन चल रही थी हाल ही में, पार्ट टाइम जॉब चल रही थी, कुछ लोग कहते हैं कि हम 3-4 घंटे नाइट के बस उसी में अपनी जिंदगी निकाल रहे हैं। तो फिर ये सारे वहां पर आए कि भाई नैपिंग स्किल्स दिखाने के लिए अपने, सो इट वाज क्वाइट नाइस टू सी, क्योंकि गवर्नमेंट ने उनको अच्छे अच्छे प्यारे प्यारे वो दिए हुए सारे मैट्रेस, कंबल, ये वो, एंड या इट वाज अमेजिंग। सारे इतना घोड़े बेच के सो रहे हैं सारी फोटोज में, सीरियसली अंतरा,
2: आंसू आ गए मैं तो सुन के ये बात, मतलब ओहो, मतलब बहुत ही स्वीट था ये तो। इनफैक्ट सोल में ही होता है जोनिंग आउट कॉम्पिटिशन।
0: अच्छा,
2: वो हाउ वेल यू कैन जोन आउट।
0: ओके, वाओ, दैट इज आल्सो अमेजिंग, क्योंकि ऑब्वियसली आज की दुनिया में इंसोम्निया बस यही तो एक बीमारी है। 1, 2, 3, 4, get on the dance floor. But seriously speaking, peaceful sleep, I think when a person wakes up after a peaceful sleep, it is the best in the world. Seriously. है ना?
2: मेरे को तो समझ में नहीं आता, जो लोग कहते हैं मैंने 10 मिनट की पावर नैप ली, उठ गई फ्रेश, मैंने कहा ये कैसे हुआ, ये व्हाट काइंड ऑफ सॉर्सरी इज दिस।
0: ये मुझे भी नहीं समझ आते, ये अलग प्राणी है, ये अर्थ के नहीं है, ये मार्स के है, मार्सलिंग्स।

0: ऑलराइट, और जाने से पहले वेल आई डू वांट टू से कि हाल ही में भारत में ये बात हुई कि भाई गोल्ड मत खरीदो, क्योंकि आपके सारे की सारी जो मुद्रा है, जो विदेशी मुद्रा है, वो बाहर जा रही है, योर फॉरेन करेंसी. लेकिन फिलहाल के लिए सिंगापुर में ऐसी कोई रुकावट नहीं है, और ऊपर से जोया लुकास की ये अमेजिंग सी जो सेल है, वाओ, दिस प्रमोशन इज अमेजिंग.
1: दिस इज मस्ती मैडनेस ऑन रेडियो मस्ती 24/7.
2: इतने आई लव समटाइम्स आई लव द क्रिएटिव ह्यूमर व्हिच कीप्स रोटेटिंग अराउंड इंस्टाग्राम की मोदी शर्म औरत का गहना है. मोदी जी ने कहा गहने मत करिए, इसीलिए हम आज से शर्म करना छोड़ देंगे.
0: आई थिंक दैट इज वंडरफुल. बिल्कुल सही चीज है भाई. भाई अब क्या कर सकते हैं, मोदी जी की बात कौन नहीं मानेगा, है कि नहीं?
2: बिल्कुल. बट आई थिंक आई अग्री, आल्सो अग्री विद यू, क्योंकि जब जॉलकास इस तरह के ऑफर निकाले तो भाई सिंगापुर में हमें बैकआउट तो करना ही नहीं है. ये सारे मौके ले लेने वाले होते हैं भाई. 40% फ्लैट ऑफ ऑन मेकिंग चार्जेस, क्या चल रहा है ये?
0: अमेजिंग. मतलब एंड दिस इज फ्लैट 40%. गोल्ड, डायमंड, पोल की, प्रेशियस ज्वेलरी, आप कुछ भी पहनो जी, 14 जून तक ही है ये पूरा का पूरा जो प्रमोशन है. तो आपको ये करना है कि जोया लुकास जाना है और जाकर अपनी ज्वेलरी अब खरीदो यार. वैसे भी दिवाली के पास महंगी हो जाएगी, गोल्ड सारा का सारा हो जाएगा, तो इससे अच्छा है कि दिस इज द राइट टाइम, मेक द बेस्ट यूज ऑफ दिस 40% ऑफ ऑन मेकिंग चार्जेस. वाओ,
2: मैं तो सोच रही हूँ, मेरे तो दिमाग में ऑलरेडी चल रहा है कि ना ये तो बहुत ही सही आइडिया है. दिवाली के टाइम पे तो महंगी हो जाएगी, अभी खरीद लेते हैं.
0: ठीक है ठीक है, तुम खरीदो, तुम इसी वीकेंड पे जाना, मैं आज ही जाऊंगी. एंड ऑन रेडियो मस्ती 24/7 आज शाम का मेरा शो है 5 बजे, जिसको कहते हैं मस्ती टॉप चार्ट्स, और उसमें एक है या दो ये जानने के लिए आप बिल्कुल 5 बजे ट्यून इन करें टू रेडियो मस्ती 24/7. स्टे ट्यून्ड. हमें भी नहीं पता इस टाइम, क्योंकि हम, मेरी तरफ से कोशिश जारी रहेगी कि ये रुक जाए, 5 बजे तक काम करे, लेकिन इसकी तरफ से जारी रहेगी कि ये जोया लुकास जाए. सो लेट्स सी व्हाट रियली हैपेंस.
2: मैं सडनली प्लान चेंज कर लिया, मैं भी आज ही जाऊंगी.
0: हैव एन ऑसम वीकेंड गाइस, एंड वी विल सी यू वेरी सून. आई विल डेफिनेटली सी यू एट 5 PM. सो ओके अंतरा.

0: रेडियो मस्ती 24/7 लाइव पर मैं हूँ अंतरा आपके साथ,
1: मैं आरजे पर मस्ती मॉर्निंग शो पर आपके साथ।
2: लीजिए समर आ गया है लेकर यादों का कारवां।
3: आपने इनकी आवाज तो सुनी है, अब क्या आप अपनी आवाज अपने ही शो के जरिए हमारे लाखों लिसनर्स तक पहुँचाना चाहेंगे? स्टेज फियर को भगाना हो या पैशन को आगे बढ़ाना हो, इट्स इम्पोर्टेंट टू स्टार्ट विद द राइट ट्रेनिंग। The RJ Academy at Masti Media Network is now open for you. That too with a hybrid model for your convenience. 12 hours training per level, flexible individual focus syllabus offered for 14 years old and above. Selected trained voices to get an opportunity to host live on Radio Masti 24/7. Email a brief intro to info@radiomasti.com.sg requesting for an application form.

0: नाचे गया एग्जिट पर
1: और गाने आ गए
0: नॉनस्टॉप म्यूजिक नॉनस्टॉप मस्ती ओनली ऑन मस्ती म्यूजिक कैफे
2: रेडियो मस्ती 24/7 लाइव अ पार्ट ऑफ मस्ती मीडिया नेटवर्क सिंगापुर।

जैसे हिलती है वैसे मत हिलाकर, लगे मुझे रहेगी रब से मिलाकर, बारी तेरी हार देना चंचला फर, माने तुझे पढ़ा किया क्या खिला

0: अर्जुन आएंगे?
1: न करण अर्जुन आएंगे, न ही आरजेएस आएंगे, पर हाँ तो सिर्फ सुपर हिट बैक टू बैक गाने आएंगे मस्ती म्यूजिक कैफे कैफे कैफे कैफे।
2: आम ले लो, ताजा मीठा आम ले लो, GGMartOnline.com से आम ले लो।
1: जब घर की याद आए GGMartOnline.com से अल्फांसो आम मंगाए, ऑर्गेनिक केमिकल फ्री स्ट्रेट फ्रॉम देवगढ़ रत्नागिरी एंड मोर नाउ एट GGMart। ऑर्डर नाउ एट GGMartOnline.com और कॉल 8085-6577। Not all music is loud. Some songs just sneak in. What? Makes you smile, hum along, and feel good. Welcome to Masti Unplugged, your indie acoustic playground on Radio Masti 24/7.

0: 40% off. 40% joy alukas.
1: 40% off. Oh my god. Let's go.
2: Offer aisa ki aap bhi khud ko rok nahi payenge. Joy Alukas laya hai the biggest jewelry sale. Flat 40% off on making charges for gold, diamond, polki and precious jewelry. And 100% value on diamond exchange. Offer valid till 14 June 2026. Visit 412-134 and 320 Serangoon Road. Joy Alukas, the world's favorite jeweler.
3: हेलो नमस्कार आदाब सत श्री अकाल गेम जय सिंगापुर सारू जय
2: नो टॉकिंग अलाउड सिर्फ म्यूजिक बोलेगा बैक टू बैक गाने ओनली ऑन मस्ती म्यूजिक कैफे
4: वेयर यू मस्ती 24/7 लाइव अ पार्ट ऑफ मस्ती मीडिया नेटवर्क सिंगापुर

0: नाचने का मन है?
1: मेरा भी। आपके रिक्वेस्ट ही बनाएंगे शो को फुल ऑन पार्टी। व्हाट्सएप करिए हमारे ऐप के थ्रू या फिर डायरेक्ट सिंगापुर नंबर 9151896 3 पर। मस्ती वॉइस आपकी चॉइस।
2: Only on Radio Musti 24/7 Live, a part of Musti Media Network Singapore. Check it out.
3: Your Musti Music Cafe is open. Freshly brewed beats

रोशन चेहरा, बालों का रंग सुनहरा, कैसे देखूं तेरी आंखें, आंखों पे चश्मे का पहरा। ये चांद सा रोशन चेहरा, बालों का रंग सुनहरा, कैसे देखूं तेरी आंखें, आंखों पे चश्मे।

आंखों से हटाया चश्मा, आंखें तो मिलाओ जी। दुनिया वाले जो भी बोले हमसे ना शर्माओ जी। अब फोन को उठाओ जी और डैडी को मिलाओ जी। उनके फ्यूचर सन इन लॉ की बात उनसे करवाओ।

0: देखो देखो वो आ गया।
1: सिंगापुर, जिसका था आपको इंतजार, जिसके लिए था आपका जिया बेकरार, लौट आया है वो लेकर किस्से और गाने बेशुमार।

0: सुनिए यादों का कारवा विद समर। याद करेंगे गुजरे जमाने की फिल्में, किस्से और गाने। तो शामिल हो जाइए समर के साथ यादों का कारवा में, सिर्फ रेडियो मस्ती 24/7 लाइव पर।
1: नमस्कार, आदाब एंड अ वेरी वार्म हेलो सिंगापुर। स्वागत है आप सभी का यादों का कारवा में, जिसे आप सुन रहे हैं रेडियो मस्ती 24/7 लाइव पर, जो है सिंगापुर का एकमात्र हिंदी रेडियो नाउ ऑन द गो। और आज हमारा कारवां गुजरेगा सिंगापुर 1979 के साल से। 1979, ये वो साल था जब दुनिया के सबसे बड़े डांसर और पॉप सिंगर माइकल जैक्सन ने अपना पहला ब्रेक थ्रू एल्बम लॉन्च किया था, ऑल द वॉल। ये वही साल था जब चाइना के संविधान में वन मेंबर इन वन फैमिली का नारा दिया गया था पॉपुलेशन कम करने के लिए। और भी बहुत कुछ हुआ था दुनिया भर में। हिंदुस्तान में कई फिल्में बनी इस साल, लेकिन मुझे आज सबसे पहले जिस फिल्म का नाम याद आ रहा है वो है गोलमाल। और वो कहते हैं ना कि हंसते हंसते पेट में दर्द होने लग जाता है, जी अगर आप ये फिल्म देखेंगे तो सच में आपके साथ ऐसा ही हो जाएगा। हिंदी सिनेमा में अगर बेहतरीन कॉमेडी फिल्म्स की बात की जाए तो मेरे ख्याल से ये फिल्म जरूर जरूर उस फेहरिस्त में होगी। ऐसा हो ही नहीं सकता कि ये फिल्म छूट जाए। बेहतरीन डायरेक्टर ऋषिकेश मुखर्जी का जबरदस्त निर्देशन, NCCP के प्रोडक्शन में ये फिल्म बनी। ऋषिकेश मुखर्जी की फिल्म थी तो जाहिर सी बात है गुलजार साहब होंगे उनके साथ। तो जी गुलजार साहब ने गाने लिखे और पंचम दा ने म्यूजिक दिया, जो बेहद कमाल का था। अमोल पालेकर, द ग्रेट एक्टर उत्पल दत्त, बिंदिया गोस्वामी इस फिल्म में मेन कैरेक्टर कर रहे थे। अच्छा, बिंदिया गोस्वामी का इस फिल्म में होने का भी एक किस्सा है। ऋषिदा पहले रेखा को लेना चाहते थे, लेकिन उनको लगा कि इस फिल्म में वैसे भी मेल एक्टर्स का ज्यादा काम है तो इतनी टैलेंटेड एक्टर का टैलेंट बेकार चला जाएगा। सो उन्होंने रेखा की जगह बिंदिया गोस्वामी जी को ले लिया। इनके अलावा देविन वर्मा है फिल्म में, डेविड है, यूनुस परवेज, दीना पाठक और शोभा घोटे, और भी बहुत सारे एक्टर्स हैं इसमें गेस्ट अपीयरेंस में, जैसे अमिताभ बच्चन साहब, लता मंगेशकर, रेखा, हेमा मालिनी, अरुणा ईरानी। फिल्म में होता कुछ यूं है कि अमोल पालेकर, जो कि राम प्रसाद हैं, वो एक पढ़े लिखे लड़के हैं, लेकिन नौकरी नहीं है इनके पास। तो यहाँ इनके अंकल आते हैं डेविड। वो बताते हैं कि भवानी शंकर के यहाँ तुम नौकरी कर लो, मेरा दोस्त है। लेकिन भवानी शंकर जो है ना उत्पल दत्त साहब, उनको मॉडर्न टाइप के लड़के अच्छे नहीं लगते। उन्हें लगता है कि बिना मूछों वाला इंसान चरित्रहीन होता है। खैर साहब, राम प्रसाद मूछें रखते हैं और भवानी शंकर से मिलने जाते हैं। उन्हें इंटरव्यू में इंप्रेस कर देते हैं और उन्हें नौकरी पर रख लिया जाता है। फिर एक दिन भारत और पाकिस्तान का हॉकी मैच हो रहा होता है, उसे देखने जाना होता है राम प्रसाद को, और वो अपनी माँ की बीमारी का बहाना बनाकर उन्हें देखने जाने की बात कहकर छुट्टी लेकर बीच में मैच देखने चले जाते हैं। लेकिन वही हॉकी का मैच देखने भवानी शंकर भी आ जाते हैं और उसे वहां पर देख लेते हैं। और फिर इस झूठ को बचाने के लिए राम प्रसाद को कितने झूठ बोलने पड़ते हैं, यही इस फिल्म का कंटेंट है, जो बेहद कमाल का है। एक गाना जो बार बार बजता है वो है टाइटल ट्रैक, गोलमाल। गोलमाल है भाई साहब, गोलमाल है। इसके अलावा गुलजार साहब का लिखा हुआ फिल्म फेयर अवार्ड विनिंग गाना है आने वाला पल जाने वाला है, सुपर्ब। उत्पल दत्त को इस फिल्म के लिए बेस्ट कॉमेडियन का फिल्म फेयर अवार्ड मिला था। 1979 की सबसे बड़ी फिल्म थी सक्सेस के मामले में। और एक खास बात यह कि ये फिल्म सिर्फ 40 दिन में शूट हो गई थी। तो आज शुरुआत इसी फिल्म के गानों से करते हैं। आप लीजिए लुत्फ इन गानों का। आई विल बी राइट बैक आफ्टर दीज सॉन्ग्स। स्टे कनेक्टेड।

0: आम ले लो, ताजा मीठा आम ले लो, GGMartOnline.com से आम ले लो।
1: जब घर की याद आए GGMartOnline.com से अल्फांसो आम मंगाए। ऑर्गेनिक, केमिकल फ्री, स्ट्रेट फ्रॉम देवगढ़, रत्नागिरी एंड मोर। नाउ एट GGMart। ऑर्डर नाउ एट GGMartOnline.com और कॉल 8085657।

0: धूम टकट धूम टकट न्या।
1: सपने में देखा सपना, ओ सपने में देखा सपना।
2: वेलकम बैक, आप सुन रहे हैं यादों का कारवां विद मी समर, ओनली ऑन रेडियो मसी 24/7 लाइव, सिंगापुर्स ओनली हिंदी रेडियो, नाउ ऑन द गो। और यादों का कारवां में आज हम बात कर रहे हैं 1979 की फिल्मों की। सिंगापुर अगर 70 के डेकेड की बात करें तो आप इस दौर की फिल्मों में देखेंगे कि आपको कई फिल्में ऐसी मिलेंगी जिनमें एक लंबी कास्ट होती है एंड म्यूजिक बड़ा होगा। मतलब जहां एक तरफ एक्शन फिल्में बन रही थी और साथ कॉमेडी भी, वहीं इस साल एक ऐसी फिल्म भी बनी जो इस जॉनर से अलग थी और वो थी जानी दुश्मन। ये एक हॉरर थ्रिलर फिल्म थी जिसमें सुनील दत्त, जितेंद्र, विनोद मेहरा, संजीव कुमार, अमरीश पुरी, रजा मुराद, नीतू सिंह, रेखा, रीना रॉय, शत्रुघ्न सिन्हा, बिंदिया गोस्वामी, प्रेमनाथ जैसे लगभग 20 से ज्यादा बड़े बड़े स्टार्स की कास्ट थी। फिल्म में होता यूं है कि ज्वाला प्रसाद जो कि रजा मुराद हैं, उनकी शादी होती है। दुल्हन ने शादी का लाल जोड़ा पहना हुआ होता है। ये लाल जोड़ा इस फिल्म का मेन कंटेंट है और शादी के पहले दिन रात को उनकी बीवी उन्हें दूध में जहर मिलाकर मार देती है। इसके बाद ज्वाला प्रसाद शैतान बन जाते हैं और उन्हें लाल जोड़े से नफरत हो जाती है और जब भी कोई नई दुल्हन लाल जोड़े में आती है तो वो उसे उठाकर ले जाते हैं और मार देते हैं। फिर एक दिन एक नई दुल्हन को उठा ले जाता है लेकिन इस बार दूल्हा उस शैतान को मार देता है, लेकिन शैतान मरे हुए आदमी से निकलकर उस दूल्हे में आ जाता है और फिर वही कहानी चलती रहती है। बेहद इंटरेस्टिंग कहानी है जो ऑडियंस को बांधे रखती है। अडल्ट फिल्म का सर्टिफिकेट मिला था इस फिल्म को, बच्चे नहीं देख सकते थे, हमने भी नहीं देखी उस दौरान। और फिर देखिए सिंगापुर समर, झूठ नहीं बोलेगा आपसे, मुझे ना हॉरर फिल्मों में डर लगता तो लगता भाई इसमें क्या है। ऐसा थोड़ी होता है कि हर मर्द को डर नहीं लगता, डर तो लगता है, दर्द भी होता है। ये सब फिल्मों की बात है कि मर्द को दर्द नहीं होता। तो कुल मिलाकर लौटते हैं इस फिल्म पर। राजकुमार कोहली साहब ने इसे डायरेक्ट किया और प्रोड्यूस किया, वर्मा मलिक ने इसके गाने लिखे और लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने इसका म्यूजिक दिया जो बहुत ही शानदार था। तेरे हाथों में पहना के चूड़ियां के मौज बंजारा ले गया हो, और एक और गाना था चलो रे डोली उठाओ कहार पिया मिलन की रुताई। ये वो गाने हैं जो बेहद हिट हुए थे इस फिल्म के। तो मैं सोच रहा हूँ कि कंप्यूटर जी क्या कहते हैं आप, दोनों सुनवाएंगे या आपकी मर्जी है जो भी सुनवा दीजिए, लेकिन इसी साल के गाने सुनवाइएगा। और आप लोग सुनते रहिए रेडियो मंजी 24/7 लाइव पर यादों का कारवां विद समर।

0: अच्छा सुनो जरा, ग्रोसरी ना खत्म हो रही है तो 1 kg आटा,
1: हाँ जी जी,
0: 1/2 kg मसूर दाल,
1: जी जी,
0: काजू किशमिश, ओ हाँ, अरे वो नमकीन भी खत्म हो रहे हैं,
1: जी जी।
0: आर यू इवन लिसनिंग या ऐसे ही जी जी किए जा रहे हो?
1: अरे डार्लिंग, व्हाई टू फियर व्हेन जी जी मार्ट इज देयर।
0: क्या जी?
1: जी जी, जी जी मार्ट, योर पर्सनल ग्रोसर। जस्ट लॉग ऑन टू ggmartonline.com, ग्रोसरी ऐड टू कार्ट करो, चेकआउट करो और ग्रोसरी एट योर डोरस्टेप।
0: वाह जी, क्या बात जी।
1: ऑर्डर टुडे फ्रॉम जीजी मार्ट, योर पर्सनल ग्रोसर। यादों का कारवां में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। मैं हूँ समर, रेडियो 24/7 लाइव पर। अच्छा, आज हम 1979 की बात कर रहे हैं, 1989 की। 1989 में आपकी भी तो कोई याद रही होंगी, हमसे शेयर कीजिए ना हमारे फेसबुक पेज पर आकर। चलिए अभी तो हम बढ़ते हैं अपनी अगली फिल्म की तरफ, जो एक सच्ची घटना पर आधारित फिल्म है। फिल्म का नाम है काला पत्थर। ये एक डिजास्टर ड्रामा फिल्म है जो हिंदुस्तान के एक राज्य झारखंड के चेसनाला में स्थित एक कोयले की खान में पानी भर जाने पर आधारित है, जिसमें करीब 372 लोगों की जान चली गई थी। इस कहानी का स्क्रीन प्ले और डायलॉग्स लिखे थे उस दशक के सबसे हिट राइटर सलीम और जावेद साहब ने। उस टाइम के हिसाब से दिस वॉज एवरेज एट बॉक्स ऑफिस, लेकिन वो होता है ना, कई फिल्में जब रिलीज होती हैं तब वो उतनी नहीं चलती, उतनी सक्सेसफुल नहीं होती, लेकिन बाद में बहुत हिट हो जाती हैं। तो ये फिल्म भी कुछ ऐसी थी, जैसे मेरा नाम जोकर के साथ हुआ था। अब जब ये फिल्म रिलीज हुई तब ये फ्लॉप थी। शोले के साथ भी ऐसा ही था पहले वीक में, लेकिन देखिए बाद में क्या इतिहास रचा उसने। लेकिन बाद में लोगों को ये फिल्म बहुत पसंद आई और ये फिल्म सक्सेसफुल भी हो गई थी। फिल्म में अमिताभ बच्चन हैं जो एक नेवी ऑफिसर होते हैं, लेकिन 300 लोगों से भरे जहाज को छोड़कर वो भाग जाते हैं। बाद में इसी कायरता के लिए वो समाज में भी बेइज्जत किए जाते हैं, सबसे आखिर में शिप छोड़ता है। लेकिन इस कैप्टन पर आरोप है कि इसने पहले ही शिप छोड़ दिया था। उनके पापा भी उनसे अच्छा बिहेव नहीं करते उनकी इस कायरता के चलते। ये बार बार कायरता वाला ख्याल अमिताभ बच्चन साहब को परेशान करता है। वो एक कोयले की खान में काम करने चले जाते हैं जहां उन्हें कोई पहचान ना सके। शशि कपूर भी है इस फिल्म में, इसी कोयले की खान में वो इंजीनियर है। साथ में शत्रुघ्न सिन्हा है जिनका फिल्म में नाम है मंगल, लेकिन पुलिस से बचने के लिए इस खान में काम करने आ जाते हैं। सिंगापुर उस दौर की फिल्में अगर आप देखेंगे तो मैं आपको बताऊं, उस दौर में किसी डाकू के किरदार का नाम ज्यादातर मंगल ही होता था। खैर साहब, मंगल कोयले की खान में काम करने वाले मजदूरों पर कभी कभी जुल्म करते हैं, जिसके लिए अमिताभ और मंगल की लड़ाई भी होती है। एक सीन में आप देखिएगा, अमिताभ बच्चन भाग कर आते हैं और उछल कर मंगल को लात मारते हैं। ये सीन बिना किसी प्रोटेक्शन के किया गया था, हाज तो नीचे गद्दे लगाकर किया जाता है। और अमिताभ फेमस भी थे खुद के असली स्टंट करने के लिए। और प्रेम चोपड़ा साहब इस खान के मालिक है। फिल्म में एक विलेन भी तो होना चाहिए, वो भी है यही प्रेम साहब। इनके अलावा राखी हैं, नीतू सिंह हैं और परवीन बाबी भी हैं। म्यूजिक इसका राजेश रोशन साहब ने दिया है, जो बहुत ही मस्त है, मतलब बहुत ही कमाल का है। शशि जी पर फिल्माया गया गाना, वो जो गाना है वो तो मुझे बहुत ही पसंद है, एक रास्ता है जिंदगी जो थम गए तो कुछ नहीं। एक रोमांटिक गाना भी है, बाहों में तेरी मस्ती के घेरे, आई लाइक इट, ये तो मुझे बहुत ही पसंद है। साहिर लुधियानवी जी ने इसके गाने लिखे हैं, जबरदस्त हिट फिल्म है ये, भाई मेरी तो फेवरेट है, मुझे तो बहुत अच्छी लगती है। अब आप इसके गाने सुन लीजिए, आप भी डिसाइड कर लीजिएगा, जब भी मौका मिले ये फिल्म जरूर जरूर देख लीजिएगा। एंजॉय कीजिए इन गानों को। यादों का कारवां सुन रहे हैं रेडियो मस्ती पर समर के साथ।

सिंगापुर जिसका था आपको इंतजार, जिसके लिए था आपका जिया बेकरार, लौट आया है वो लेकर किस्से और गाने बेशुमार।

0: यादों का कारवा विद समर, याद करेंगे गुजरे जमाने की फिल्में, किस्से और गाने। तो शामिल हो जाइए समर के साथ यादों का कारवा में, सिर्फ रेडियो मस्ती 24/7 लाइव पर।
1: वेलकम बैक, यादों का कारवां चल रहा है यहाँ रेडियो मसी 24/7 लाइव पर सिंगापुर। यहाँ हम बात कर रहे हैं आज 1979 की हिट सुपर हिट फिल्मों की। ऋषि कपूर साहब की साल 3 फिल्में आई, लेकिन सरगम जिसके अब हम बात करने वाले हैं, ये फिल्म इस साल जबरदस्त हिट रही। फिल्म स्टोरी के साथ साथ इसका म्यूजिक और भी जबरदस्त था। कमाल का म्यूजिक दिया था लक्ष्मीकांत प्यारेलाल साहब ने, जिसके लिए इनको बेस्ट म्यूजिक कंपोजर का फिल्म फेयर अवार्ड भी मिला था उस साल। डायरेक्टर के विश्वनाथ ने इसे डायरेक्ट किया और लिखा भी। यह फिल्म के विश्वनाथ की बनाई हुई तेलुगु मूवी श्री श्री मुव्वा का रीमेक थी, जिसमें जया प्रदा थी जो एक म्यूट डांसर का रोल प्ले करती हैं, और इस फिल्म के बाद साउथ इंडियन फिल्म इंडस्ट्री में वो स्टार बन गई थी। तो जब इस फिल्म को उन्होंने हिंदी में बनाया के विश्वनाथ साहब ने, तो इस फिल्म में भी जया प्रदा को लिया उन्होंने, और यहाँ भी जया प्रदा ने वही रोल प्ले किया और यहाँ भी वो इस फिल्म के बाद स्टार बन गई। ऋषि कपूर जया प्रदा के अलावा इस फिल्म में शक्ति कपूर हैं, अरुणा ईरानी हैं, असरानी हैं। फिल्म की कहानी कुछ यूं है कि जया प्रदा बोल सुन नहीं सकती हैं, उनका नाम हेमा है। वो अपने फादर जो कि एक स्कूल टीचर हैं, अपनी सौतेली माँ और सौतेली बहन के साथ रहती हैं। माँ और बहन इन पर अत्याचार करती हैं और इनकी पैसों के बदले किसी बूढ़े आदमी के साथ शादी करा देना चाहती हैं। लेकिन इसी बीच, जैसा कि हिंदी फिल्मों में होता ही है, हीरो की एंट्री होती है। ऋषि कपूर जो कि एक डफली वाले हैं, वो हेमा का फेवर करते हैं और उसे उसकी मंजिल तक पहुंचाने में मदद करते हैं। फिल्म के सारे गाने खूब चले, खास करके डफली वाले डफली बजा। इस गाने को फिल्म फेयर भी मिला और ये गाना 25 हफ्ते तक बिना का गीत माला में टॉप पोजीशन पर भी बजता रहा। इसके अलावा कोयल बोली दुनिया डोली, ये भी खूबसूरत गाना है, और वो राम जी की निकली सवारी, ये भी जबरदस्त गाना है। तो भाई, इतने सारे खूबसूरत गाने लिखे आनंद बख्शी साहब ने, तो मैं समझ नहीं पा रहा हूँ कि कौन सा गाना सुनाया जाए। डफली वाले तो ऑफकोर्स होने चाहिए, क्या कहते हैं आप? और इसके अलावा राम जी की निकली सवारी कर दें क्या? हाँ, कंप्यूटर जी, डिसाइड। बहुत ही कमाल ऑसम म्यूजिक है इसमें, आप ही डिसाइड कीजिए।

0: आम ले लो, ताजा मीठा आम ले लो, GGMartOnline.com से आम ले लो।
1: जब घर की याद आए GGMartOnline.com से अल्फांसो आम मंगाए। ऑर्गेनिक, केमिकल फ्री, स्ट्रेट फ्रॉम देवघर, रत्नागिरी एंड मोर। नाउ एट GGMart। ऑर्डर नाउ एट GGMartOnline.com और कॉल 8085-6577।
2: Take an hour off the world. Let unplugged melodies soothe your soul and spark your imagination. Musti Unplugged, the indie hour of pure musical bliss.
3: Only on Radio Musti 24/7 Live, a part of Musti Media Network Singapore.
4: Check it out.
5: सिंगापुर बातों बातों में वक्त कैसे निकल जाता पता नहीं चलता, लेकिन ना हम बातें करते रहे और हम अपने इस शो के आधे पड़ाव पर आ चुके हैं, मतलब आधा शो अब खत्म होने को है। तो चलिए हम बातों बातों में बात कर लेते हैं 1979 की एक और फिल्म की। मैं समर हूँ, रेडियो मसी 24/7 लाइव पर यादों का कारवां के जरिए आपसे मुखातिब हूँ। और जब मैंने कहा कि बातों बातों में हम बात कर लेते हैं एक और फिल्म की, तो बातों बातों में की क्यों ना बात की जाए। डायरेक्टर बासु चटर्जी ने इसे प्रोड्यूस किया और डायरेक्ट किया। मैं फिल्म बातों बातों में की बात कर रहा हूँ। अमोल पालेकर थे इसमें, टीना मुनीम थी उनके साथ, डेविड और पर्ल पदम सी थी। ये फिल्म एक रोमांटिक कॉमेडी है, लेकिन गाने इसके बहुत ही ज्यादा हिट हुए। इसी साल अमोल पालेकर एक जबरदस्त हिट दे भी चुके थे, गोलमाल। ये फिल्म बासु चटर्जी की फिल्म थी और बासु चटर्जी की फिल्म में अक्सर फैमिली ड्रामा हुआ करती थी। इस फिल्म की कहानी भी कुछ ऐसी है। इस फिल्म में पर्ल पदम सी जो की एक विधवा है, उनकी बेटी नैन्सी जो कि टीना मुनीम बनी है, और डेविड हैं जो पर्ल पदमसी के भाई बने, वो उनके लिए रिश्ता लेकर आते हैं नैन्सी के लिए। और नैन्सी किसी अमीर इंसान से शादी करना चाहती हैं। एक दिन 9:10 पर वेस्टर्न रेलवे की लोकल ट्रेन में, जो कि अंधेरी से चर्च गेट जा रही होती है, उसमें डेविड नैन्सी की मुलाकात टोनी ब्रिगेंजा यानी अमोल पालेकर से करवाते हैं। ये एक पेंटर है। धीरे धीरे बातों का सिलसिला बढ़ता है और फिर ये दोनों एक दूसरे को पसंद करने लग जाते हैं। बस बातों बातों में फिल्म की कहानी कैसे घूमती है और कैसे इन दोनों में तकरार तक हो जाती है, ये आपको फिल्म देखकर ही पता लगेगा। पर इतना तो मैं आपको बता ही दूं कि फिल्म की एंडिंग हैप्पी एंडिंग है। म्यूजिक डिपार्टमेंट में 4 गाने हैं, जिसमें 2 गाने अमित खन्ना ने लिखे हैं और 2 योगेश साहब ने लिखे हैं। म्यूजिक राजेश रोशन साहब ने दिया, जो बेहद कमाल का है। उठे सबके कदम देखो रम पम पम, अजय से गीत गाया करो। और एक वो सुनिए, कहिए कहिए सुनिए, कहते सुनते बातों बातों में प्यार हो जाएगा। और वो भी तो है, न बोले तुम न मैंने कुछ कहा कहा, मगर न जाने ऐसा क्यों लगा कि धूप में खिला है चांद, दिन में रात हो गई। आई लाइक इट, बहुत ही बढ़िया गाना। एक और गाना सुनो जो सीरियस है, किशोर कुमार साहब ने गाया, कब तक यूं मन को अंधेरे छलेंगे, उदासी भरे दिन कभी तो ढलेंगे। आई लाइक इट, सारे गाने कमाल हैं। तो कंप्यूटर जी, इतने सारे गानों का मैंने आपको पता बता दिया है, तो मुझे नहीं लगता कि आप एक ही गाना सुना पाएंगे। हाँ, 2 गाने तो बनते ना। तो ये गाने सुनिए आप, यादों के कारवां पर रहिए समर के साथ। मैं लौटूंगा एक और फिल्म का जिक्र लेकर आपसे कुछ ही देर में। स्टे कनेक्टेड।

0: hit us on the gram. It's Radio Musty 24/7. And don't forget to like our ever buzzing Facebook page, Radio Musty 24/7 Singapore.
1: Check it out.
2: To Shahi Maharani for the special treat.
3: Thank you to Shahi Maharani for making this Mother's Day more special.
4: Thank you, Shahi Maharani, for comforting and mouth-watering flavors.
3: Thank you.
5: Thank you.
4: Thank you.
2: Thank you. We love you.
6: For 25 years, Shahi Maharani has brought royal North Indian flavors to Raffle City. Celebrate with 6 Shahi Signature Wet and Non-Veg dishes for just $25 plus. Served hot on your table. Now on till 30th June with minimum spend of $100 plus per table. 25 years of royal flavors. Only at Shahi Maharani North Indian Restaurant. Book now at shahimaharani.com or call 6235-8840. Terms and conditions apply.
7: बिना फ्लाइट टिकट खरीदे दुनिया का चक्कर लगवाएगा कौन? पेपराजी से भी तेज गॉसिप्स आपको लाकर देगा कौन? क्या बात है, आप तो काफी स्मार्ट निकले। तो सुनिए, सालों से एक टक सिंगापुर तक आपको अपडेट रखने वाली आपकी आरजे नुपुर को मस्ती मॉर्निंग्स पर ट्यूसडे, वेंसडे एंड थर्सडे को ओनली ऑन रेडियो मस्ती 24/7 लाइव। ये है मस्ती मॉर्निंग्स मेरी जान।
0: फॉर शो टाइमिंग्स चेक आउट द रेडियो मस्ती ऐप नाउ।
8: जोश में रहो, उठे सबके कदम, देखो रम पम पम।

वेलकम बैक, यादों का कारवां सुन रहे हैं आप मेरे यानी समर के साथ रेडियो मैसेज 24/7 लाइव पर। आज हमारा कारवां गुजर रहा है 1979 के साल से। 70 के दशक में सबसे ज्यादा हिट फिल्में देने वाले डायरेक्टर मनमोहन देसाई भी इस साल अपनी एक फिल्म लेकर आए। इस साल की सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्म रही है और वो थी सुहाग। एक बार फिर मनमोहन देसाई के हिट स्टार्स थे इसमें, अमिताभ बच्चन साहब, परवीन बाबी, शशि कपूर, अमजद खान और रेखा। खलनायक के लिए फिक्स जोड़ी जीवन और रंजीत। कादर खान और निरूपा रॉय भी थी इस फिल्म में। प्रयागराज ने फिल्म लिखी, डायलॉग्स लिखे थे कादर खान साहब ने और यह फिल्म भी वही फैमिली रिलेशन वाली फिल्म थी जैसे कि देसाई साहब की लगभग हर फिल्म में होता था। अमजद खान की बीवी होती है निरूपा रॉय जो दो बच्चों को जन्म देती है, लेकिन कादर खान जो एक गैंगस्टर होते हैं एक बच्चे को उठाकर ले जाते हैं और जीवन को सौंप देते हैं। तो जी एक बेटा तो अपनी माँ के पास बड़ा होता है जो कि है शशि कपूर, वो एक पुलिस ऑफिसर बन जाते हैं एंड एक बेटा जीवन के पास बड़ा होता है और जीवन की तरह शराबी कबाबी बन जाता है, लेकिन दिल का बड़ा अच्छा होता है वो। फिल्म का म्यूजिक बड़ा कमाल का है, आपको बेहतरीन गाने देखने को मिलेंगे। मेरा तो फेवरेट है रेखा और अमिताभ पर फिल्माया गया 18 बरस की तू होने को आई रे, कौन पूछेगा जतन तू कुछ कर ले। इसके अलावा शशि कपूर और अमिताभ बच्चन साहब पर फिल्माया गया गाना दोस्ती का गाना, जो शोले के बाद मेरे ख्याल से दोस्ती के लिए सबसे ज्यादा हिट गाना हुआ करता था उस दौर में। ए यार सुन यारी तेरी मुझे जिंदगी से भी प्यारी है। एक और गाना था माँ की भेंट थी और

इसके अलावा एक गाना और था जो मस्ती से भरा था, तेरी रब ने बना दी जोड़ी तेरी रब ने। ये गाना लंदन की हाइड पार्क में पिक्चराइज है, जिसमें साउथ हॉल के यूके बेस्ड डांस ग्रुप ने डांस किया था। मनमोहन देसाई की फुल एंटरटेनमेंट फिल्म है, ये आप देख सकते हैं। खैर अभी तो आप ये गाने सुन लीजिए इस फिल्म से। मुझे लगता है कि एक गाने से तो काम नहीं चलेगा। कंप्यूटर जी अप टू यू।

0: 40% off. 40% joy alukas.
1: 40% off. Oh my god. Let's go. Let's go.
2: Offer aisa ki aap bhi khud ko rok nahi payenge. Joya Lucas laya hai the biggest jewelry sale. Flat 40% off on making charges for gold, diamond, polki and precious jewelry. And 100% value on diamond exchange. Offer valid till 14 June 2026. Visit 412-134 and 320 Serangoon Road. Joya Lucas, the world's favorite jeweler.
3: रेडियो मस्ती 24/7 लाइव पर मैं हूँ अंतरा आपके साथ।
4: मैं आरजे पर मस्ती मॉर्निंग शो पर आपके साथ।
5: लीजिए समर आ गया है लेकर यादों का कारवां।
6: आपने इनकी आवाज तो सुनी है, अब क्या आप अपनी आवाज अपने ही शो के जरिए हमारे लाखों लिसनर्स तक पहुंचाना चाहेंगे? स्टेज फियर को भगाना हो या पैशन को आगे बढ़ाना हो, इट्स इम्पोर्टेंट टू स्टार्ट विद द राइट ट्रेनिंग। The RJ Academy at Masti Media Network is now open for you. That too with a hybrid model for your convenience. 12 hours training per level. Flexible, individual-focused syllabus offered for 14 years old and above. Selected trained voices to get an opportunity to host live on Radio Masti 24/7. Email a brief intro to info@radiomasti.com.sg requesting for an application form.

0: आजा,
1: दिल की प्यास बुझा जा रहे। अरे आप आ गए, मुझे पता नहीं चला। नमस्कार, मेरा नाम है समर, रेडियो मिर्ची 24/7 लाइव पर एक बार फिर से आपका स्वागत। मैं तो यादों का कारवां लेकर आपसे मुखातिब हूँ, और आज जो हमारा एक कारवां है ये गुजर रहा है 1979 के साल से, 1979 से। और ये जो गाना आज आ रहे, अभी मैं गुनगुना रहा था ना, कितना मस्त है गाना, नूरी नूरी फिल्म का ये गाना है। आपने नहीं देखा, क्या बात कर रहे हैं आप, सच में। तो चलिए इसी फिल्म की बात कर लेते हैं। यश चोपड़ा साहब ने इस फिल्म को प्रोड्यूस किया था और मनमोहन कृष्ण ने इसे डायरेक्ट किया था। ये फिल्म सुपरहिट हुई और साल की 7वीं सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्म बनी। इस फिल्म में फारूक शेख साहब थे, पूनम ढिल्लन थी, मदन पुरी और भरत कपूर थे। भरत कपूर इसमें विलेन की भूमिका में थे। जम्मू कश्मीर के भद्रवाह कस्बे में नूरी अपने फादर इफ्तिखार साहब के साथ रहती है और ये फारूक शेख से मोहब्बत करती है। अब ये एक दूसरे से शादी करना चाहते हैं, लेकिन इस बीच यूसुफ यानी फारूक शेख के बॉस जो कि भरत कपूर हैं, वो नूरी को पसंद करने लग जाते हैं और शादी को रुकवाने के लिए यूसुफ को काम के सिलसिले में बाहर भेज देते हैं। नूरी के फादर से बशीर खान जो कि भरत कपूर हैं, वो शादी के लिए नूरी का हाथ मांगते हैं। फिर बाद में बहुत कुछ इंटरेस्टिंग होता है। अब इसके लिए तो आपको फिल्म देखनी पड़ेगी ना, पूरी फिल्म की स्टोरी मैं थोड़ी सुनाऊंगा। क्लाइमेक्स इसका बेहद कमाल का है, म्यूजिक कमाल का ही है जो खयाम साहब ने कंपोज किया, बहुत जबरदस्त है। और गाने लिखे जावेद अख्तर साहब के फादर जानिसार अख्तर साहब ने। आ जा रे मेरे दिल पर आ जा, इसके अलावा चोरी चोरी कोई आए चुपके चुपके, उस टाइम पर बन रही फिल्मों में एक अलग ही टाइप की फिल्म है ये, इट्स डिफरेंट बट सुपर्ब। मौका मिले तो देखिएगा, गाने सुन लीजिए। अभी तो यादों का कारवां पे आप हैं समर के साथ।

सिंगापुर जिसका था आपको इंतजार, जिसके लिए था आपका जिया बेकरार, लौट आया है वो लेकर किस्से और गाने बेशुमार।

0: यादों का कारवा विद समर, याद करेंगे गुजरे जमाने की फिल्में, किस्से और गाने। तो शामिल हो जाइए समर के साथ यादों का कारवा में, सिर्फ रेडियो मस्ती 24/7 लाइव पर।
1: आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है यादों का कारवा में। मैं हूँ समर, रेडियो मस्ती 24/7 लाइव पर। आज हमारा कारवा गुजर रहा है 1979 के साल से, 1979। जहाँ ये दशक पूरा हो रहा था इस साल, वहीं नए नए एक्टर्स की एंट्री भी हो रही थी, जैसे मिथुन चक्रवर्ती, अनिल कपूर, ऋषि कपूर अब तक सुपरस्टार हो चुके थे, और एक शख्स जिसका गोल्डन टाइम चल रहा था वो हैं अमिताभ बच्चन साहब। सुहाग और काला पत्थर के बाद इनकी एक और ब्लॉकबस्टर फिल्म आई इसी साल, मिस्टर नटवरलाल। सिंगापुर शायद आपको नहीं पता होगा, हिंदुस्तान के एक बहुत बड़े ठग हुआ करते थे नटवरलाल। कहते हैं इन्होंने हिंदुस्तान के बड़े से बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट को चूना लगाया था, यहाँ तक कि इन्होंने तो ताजमहल और लाल किला भी बेच दिया था। तो इस फिल्म के कैरेक्टर का नाम, जो कि अमिताभ बच्चन ने प्ले किया है, इसी नटवरलाल पर बेस्ड है। डायरेक्टर राकेश कुमार ने इसे डायरेक्ट किया, और राकेश कुमार ने ही फिल्म का स्क्रीन प्ले भी लिखा है। डायलॉग्स कादर खान ने लिखे हैं। फिल्म का कंटेंट एक्शन कॉमेडी है, जहां अमिताभ बच्चन अपने बड़े भाई जो कि अजीत हैं, वो एक पुलिस ऑफिसर हैं, उनके साथ रहते हैं। अमजद खान जो खलनायक है, वो अजीत को रिश्वत के आरोप में फंसा देते हैं। इसके बाद नटवर यानी अमिताभ बच्चन साहब कसम खाते हैं अमजद खान से बदला लेने की, और वो एक अनजान मिस्टर नटवरलाल के नाम से बुरे काम करने लग जाते हैं, जो आम जनता के लिए बुरे नहीं होते, सिर्फ अपराधियों के लिए बुरे होते हैं। इस फिल्म में बहुत कुछ खास है। आनंद बख्शी साहब ने इसके लिए गाने लिखे हैं, और एक गाना जो बच्चों को बड़ा अच्छा लगता है, वो उनका फेवरेट सॉन्ग बन गया था, और आज भी उतना ही फेवरेट है, मुझे तो बहुत पसंद है। मेरे पास आओ मेरे दोस्तों एक किस्सा सुनो, ये अमिताभ बच्चन साहब का पहला गाना है जो उन्होंने खुद गाया था। पहले तो मना कर दिया था उन्होंने, लेकिन आनंद बख्शी साहब ने बार बार रिक्वेस्ट की तो वो मान गए, गाना गाया, और आप सुनिए बेहद कमाल का ये गाना। और एक और गाना है, अगर अमिताभ बच्चन और रेखा के किसी भी गाने की बात होती है तो ये गाना तो जरूर उस लिस्ट में होता ही है, परदेसिया। जी परदेसिया, ये सच है पिया, सब कहते हैं तूने मेरा दिल ले लिया। इन दिनों में इन दोनों का अफेयर भी काफी चर्चा में था, तो ये गाना भैया बार बार दिखाया जाता था सिनेमा में। मतलब लोग क्या करते थे कि प्रोजेक्टर रूम की जिस विंडो से लाइट आती थी, जिससे प्रोजेक्ट होता था, उसके सामने खड़े हो जाते थे, उसमें सामने शर्ट लटका दिया करते थे, और कहते थे इसे रिवाइंड करो, फिर से सुनाओ, फिर से दिखाओ। ये आलम था इस गाने को लेकर, ये क्रेजीनेस थी उस जमाने में इस गाने को लेकर। इसके अलावा मुझे तो वो गाना भी अच्छा लगता है, अरे हे ऊंची ऊंची बातों से किसी का पेट भरता नहीं, ये भी मुझे पर्सनली बहुत पसंद है। तो मेरे ख्याल से परदेसिया तो बनता है, क्या कहते हैं आप? और फिर जब परदेसिया हो जाएगा तो मेरे पास आओ मेरे दोस्तों एक किस्सा नहीं सुनोगे। कंप्यूटर जी, दो गाने बैक टू बैक प्ले कीजिए प्लीज, और आप सुनते रहिए रेडियो मस्ती 24/7 लाइव पर समर के साथ यादों का कारवां। कुछ यादें ताजा हुई तो हमसे जरूर शेयर कीजिएगा।

0: tuned into Radio Masti 24/7 Live, keeping you connected anywhere, anytime, the Desi way.
1: अच्छा सुनो जरा, ग्रोसरी ना खत्म हो रही है तो एक केजी आटा,
2: हाँ जी जी,
1: आधा केजी मसूर दाल,
2: जी जी,
1: काजू किशमिश, ओ हाँ, अरे वो नमकीन भी खत्म हो रहे हैं,
2: जी जी,
1: आर यू इवन लिसनिंग या ऐसे ही जी जी किए जा रहे हो?
2: अरे डार्लिंग, व्हाई टू फियर व्हेन जी जी मार्ट इज देयर?
1: क्या जी?
2: जी जी, जी जी मार्ट, योर पर्सनल ग्रोसर, जस्ट लॉग ऑन टू ggmartonline.com, ग्रोसरी ऐड टू कार्ट करो, चेकआउट करो और ग्रोसरी एट योर डोरस्टेप.
1: वाजी, क्या बात जी.
2: Order today from GG Mart, your personal grocer.

सीना, तुम डाकू मैं हूँ शीशा, तुम पत्थर शीशा पत्थर टकराने दो। आने वाला आएगा जाने वाला जाएगा, तुम ना मानो तो जाने दो। तोबा तोबा क्या होगा, होना है जो वो हो।

वेलकम बैक, आप सुन रहे हैं यादों का कारवां, ओनली ऑन रेडियो मसी 24/7 लाइव, सिंगापुर ओनली हिंदी बॉलीवुड रेडियो, नाउ ऑन द गो। अगली सुपरहिट फिल्म जिसका मैं जिक्र करूंगा यादों का कारवां में, वो है लहू के दो रंग। डैनी, विनोद खन्ना, इंद्राणी मुखर्जी, हेलन, रंजीत, मैकमोहन इस फिल्म में थे। बहुत ही कमाल की स्टोरी है, जिसमें विनोद खन्ना एक फ्रीडम फाइटर होते हैं और वो हांगकांग चले जाते हैं, जहां हेलन उनको बचाती है। इसी बीच दोनों में प्यार हो जाता है और हेलन बच्चे की मां बनने वाली होती है, लेकिन वो शमशेर यानी विनोद खन्ना से कहती है कि तुम एक मिशन पर हो, इसलिए तुम इंडिया जाओ वापस, लेकिन अपने बेटे को लेने जरूर वापस आना। यहाँ शमशेर पहले से शादीशुदा है, जिससे उसे ऑलरेडी एक बेटा है। शमशेर का दोस्त शंकर यानी रंजीत शमशेर को मार देता है अपने दोस्त मैक की मदद से, लेकिन दोनों जो सोना लूटते हैं उसमें से एक मैक रख लेता है और शंकर को पता भी नहीं चलता। मैक 14 साल के लिए जेल चला जाता है। इंद्राणी मुखर्जी से जो बेटा होता है वो बड़ा होकर विनोद खन्ना ही बनते हैं, मतलब डबल रोल है विनोद खन्ना साहब का। उधर हेलन का बेटा बड़ा होकर डैनी बनता है। कहानी में बड़ा ट्विस्ट है जब दोनों भाई मिलते हैं एंड विनोद खन्ना जो पुलिस ऑफिसर होते हैं वो अपने बाप के कातिल को ढूंढते हैं। इस बेहद कसी हुई स्टोरी को लिखा है सूरज सनीम ने और डायरेक्शन जानते हैं किसने किया है? महेश भट्ट साहब ने। फिल्म के गाने बप्पी लहरी ने लिखे हैं और म्यूजिक भी इन्होंने ही दिया है, जिसमें एक गाना तो मेरा जबरदस्त फेवरेट है, चाहिए थोड़ा प्यार, थोड़ा प्यार चाहिए, जाने मन गुलबदन मेरी बात मानिए। इस फिल्म ने 2 फिल्म फेयर अवार्ड जीते थे, जो बेस्ट सपोर्टिंग रोल के लिए था एंड दूसरा था अवार्ड मधुरकर एस शिंदे के लिए, जो बेस्ट आर्ट डायरेक्शन के लिए उन्हें मिला। तो यूं कुल मिलाकर ये फिल्म बहुत ही एंटरटेनिंग है, मौका मिले तो जरूर देखिएगा। अभी तो चाहिए थोड़ा प्यार, आने दें, सुन लेते हैं।

0: राज की बात बताऊं, मेरी आवाज कभी अच्छी थी ही नहीं।
1: अगर हम सबकी जानी पहचानी गोल्डन वॉइस के मालिक दी अमीन सयानी जी का ये कहना है, तो सोचिए आप भी अपनी आवाज को सबके दिलों तक कैसे ले जा सकते हैं। द RJ Academy एट मस्ती मीडिया नेटवर्क इज नाउ ओपन फॉर यू। That too with a hybrid model for your convenience. 12 hours of training per level. Flexible individual focused syllabus offered for 14 years and above. Selected trained voices to get an opportunity to host live on Radio Masti 24/7. Email a brief intro to info@radiomasti.com.sg requesting for application form.
2: Namaste behno aur bhaiyo, main aapka dost Amin Sayani bol raha hoon.
3: 40% off, 40% joy Alukas.
4: 40% off? Oh my god, let's go, let's go.
5: Offer aisa ki aap bhi khud ko rok nahi payenge. Joy Alukas laya hai the biggest jewelry sale. Flat 40% off on making charges for gold, diamond, polki and precious jewelry. And 100% value on diamond exchange. Offer valid till 14 June 2026. Visit 412-134 and 320 Serangoon Road. Joy Alukas, the world's favorite jeweler.

यादों का कारवां में आप सभी का एक बार फिर दिल से स्वागत है। और आज ये जो हमारी मुलाकात है, ये आखिरी मुलाकात है, लेकिन आपको हमारा ये यादों का कारवां कैसा लगा आप हमसे जरूर शेयर कीजिएगा, हमारे फेसबुक पेज पर आकर कीजिएगा। एंड आज की जो लास्ट मूवी है जिसके बारे में मैं आपको बताने वाला हूँ, वो है अमिताभ बच्चन साहब की ही इस साल की 79 की लास्ट मूवी। हालांकि ये फिल्म उतनी बड़ी हिट नहीं थी उस टाइम पर, तो नहीं थी, लेकिन आज जब हम इस फिल्म को देखते हैं तो लगता है कि यार क्यों ये फिल्म कमाल की थी, चली क्यों नहीं, उस वक्त फ्लॉप क्यों हो गई, जबकि फिल्म का आर्ट, डायरेक्शन, एक्शन एंड सिनेमाटोग्राफी खूब तारीफ बटोर चुके थे। खैर ये एक ही फिल्म नहीं थी, और भी कई ऐसी फिल्में हैं जो हिट तब नहीं हुई थी लेकिन बाद में बहुत अच्छी लगी, सराही जाती है। बड़े बजट की फिल्म थी ये, फिल्म का नाम नहीं बताया मैंने अब तक आपको, द ग्रेट गैम्बलर। काफी सीन जो है इस फिल्म के रोम, वेनिस, लिस्बन और इंडिया में गोवा में शूट हुए। फिल्म में अमिताभ बच्चन का डबल रोल है, साथ में जीनत अमान है, मदनपुरी है इफ्तिखार, उत्पल दत्त, ओम शिवपुरी, जगदीश राज जो कि एक बार फिर से पुलिस इंस्पेक्टर बने। एक बात मैं आपको बता दूं, शायद आप नहीं जानते हो कि जगदीश राज का गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स में नाम है सबसे ज्यादा पुलिस की भूमिका करने के लिए। इनके अलावा हेलेन भी है, बेहद खूबसूरत फिल्म है ये, जिसमें एक गाना जो कि वेनिस में फिल्माया गया है, दो लफ्जों की है दिल की कहानी, कल्ट क्लासिक सॉन्ग है जो आज भी उतना ही पॉपुलर है, कम से कम लव कपल्स में तो उतना ही पॉपुलर है जितना तब था। और साहब इतनी बड़ी और खूबसूरत फिल्म बनाने वाले पता है कौन थे, शक्ति सामंत साहब। हाँ, गाने लिखे थे आनंद बख्शी साहब ने और म्यूजिक था पंचमदा का। तो चलिए इसी फिल्म के गानों के साथ दीजिए मुझे इजाजत, आपसे फिर मुलाकात होगी, लेकिन जाने से पहले मेरे कुछ वादे हैं उन पर अमल जरूर कीजिएगा। कहिए कि आप रखेंगे अपना ख्याल, कहिए हाँ, अपने साथ अपने अपनों का, उनके साथ अपने आसपास के लोगों का और चीजों का ख्याल रखिएगा। किसी के दिल में मोहब्बत बनकर बस जाएगा, किसी के चेहरे पर मुस्कुराहट बनकर सज जाएगा, और कुछ ऐसा कर जाएगा कि लोग आपको याद करें। याद मुझे भी रखिएगा अपनी दुआओं में, और इंतजार कीजिएगा मैं आपसे मिलूंगा यहीं पर। तब तक के लिए नमस्कार, टेक गुड केयर।

0: amore mio, dove sei tu? Hey, क्या गा रहा है?
1: अपने प्यार को याद कर रहा है और कह रहा है कि
0: ऐसे नहीं, गा के सुनाओ ना।
1: गा के? अच्छा।

0: आरजे गया एग्जिट पर और गाने आ गए नॉनस्टॉप म्यूजिक नॉनस्टॉप मस्ती ओनली ऑन मस्ती म्यूजिक कैफे
1: रेडियो मस्ती 24/7 लाइव अ पार्ट ऑफ मस्ती मीडिया नेटवर्क सिंगापुर चेक इट आउट.

0: अर्जुन आएंगे?
1: न करण अर्जुन आएंगे, न ही आरजेएस आएंगे, पर हाँ तो सिर्फ सुपर हिट बैक टू बैक गाने आएंगे मस्ती म्यूजिक कैफे।
2: पुरुष ही नहीं, महापुरुष है, महापुरुष।
1: वेंसडे को मूड डाउन हो गया, कोई बात नहीं, हमारे पास उसका भी जुगाड़ है, मिडवीक ब्लू, जहां काम की चिंता छोड़ो और हमारे साथ मस्त हो जाओ। फिल्मी बातें, मस्ती मोमेंट्स, थोड़ा छेड़ना और पंगे लेना भी, क्योंकि लाइफ सिर्फ काम के लिए नहीं है मेरे दोस्त। ट्यून इन एंड पावर थ्रू द वीक विद मिडवीक ब्लूज ऑन रेडियो मस्ती 24/7। आओ मूड चेंज करें।
3: Do take an hour off the world. Let unplugged melodies soothe your soul and spark your imagination. Musti Unplugged, the indie hour of pure musical bliss.
4: Only on Radio Musti 24/7 Live, a part of Musti Media Network Singapore.

0: You're tuned into Radio Masti 24/7 Live, keeping the world Bollywood entertained anytime, anywhere.
1: ए जय माताजी, माताजी ने हम कहीं ने कहूँ कि वाह फरे वादल फरे ने वायरो फरे पढ़े एक बार बोले बच्ची मारे मित्रों आ मित्रों कदी ना फरे कि हाँ

0: आदाब सत श्री अकाल गेम जय सिंगापुर सारू जय
1: नो नो टॉकिंग अलाउड सिर्फ म्यूजिक बोलेगा बैक टू बैक गाने ओनली ऑन मस्ती म्यूजिक कैफे
2: रेडियो मस्ती 24/7 लाइव अ पार्ट ऑफ मस्ती मीडिया नेटवर्क सिंगापुर.

0: Your Masti Music Cafe is open. Freshly brewed beats served hot and back to back.
1: जब एक धुन से सांस का पता चल जाता था, जब एक मिस्ड कॉल से आवाज का पता चल जाता था, घिसी हुई वीडियो टेप्स पर बनी हमारी क्रिस्टल क्लियर यादें, समोसा पैटीज, फूटी लिमका, फ्लेम्स से लेकर स्लैम बुक्स तक, झूठी बॉटल से कोल्ड ड्रिंक पीने को इनडायरेक्ट किस समझने वाले दिन, योर डोज ऑफ 90s नॉस्टैल्जिया, मस्ती 90s मिक्सटेप विद आपकी 90s वाली अंतरा, थर्सडेज 11 AM ऑनवर्ड्स ओनली ऑन रेडियो मस्ती 24/7 लाइव।
2: बड़े देशों में ऐसी छोटी छोटी बातें होती रहती हैं।
3: छोटी छोटी बातें छोड़ो और बड़े बड़े हिट सुनो। आपके रिक्वेस्ट सी बनाएंगे शो का ब्लॉकबस्टर प्लेलिस्ट। रोमांटिक, फिल्मी, पार्टी वाइब्स, सब मिलेगा यही के यही। व्हाट्सएप करिए हमारे ऐप के थ्रू या फिर डायरेक्ट सिंगापुर नंबर 9151896 पर। मस्ती वॉइस आपकी चॉइस।
4: ओनली ऑन रेडियो मस्ती 24/7 लाइव, अ पार्ट ऑफ मस्ती मीडिया नेटवर्क सिंगापुर।
5: चेक इट आउट।
0: ना करण अर्जुन आएंगे, ना ही आरजेस आएंगे, फिर हाँ तो सिर्फ सुपर हिट बैक टू बैक गाने आएंगे। मस्ती म्यूजिक कैफे।

0: दस का बीस।
1: अरे अरे अब बस 10 से दिल कहाँ भरेगा। मस्ती टॉप 20 लेकर रेणुका जो आने वाली है। टाइम टू रेज द बार। मस्ती टॉप 20 बॉलीवुड चार्ट बस्टर्स ऑफ द वीक फुल ऑन रेणुका स्टाइल। Friday evenings, 5 p.m. onwards, catch the OG rock star Renuka with the week's top chart busters. Musti Top 20, only on Radio Musti 24/7, the only live Bollywood radio across Southeast Asia since 2009. Your Musti Music Cafe is open. Freshly brewed beer.

0: नाचे गया एग्जिट पर
1: और गाने आ गए ड्यूटी पर।
0: Non-stop music, non-stop musty, only on Musty Music Cafe.
2: Radio Musty 24/7 Live, a part of Musty Media Network Singapore.

0: नाचे गया एग्जिट पर और गाने आ गए नॉनस्टॉप म्यूजिक नॉनस्टॉप मस्ती ओनली ऑन मस्ती म्यूजिक कैफे
1: रेडियो मस्ती 24/7 लाइव अ पार्ट ऑफ मस्ती मीडिया नेटवर्क सिंगापुर
2: चेक इट आउट.

0: करण अर्जुन आएंगे?
1: न करण अर्जुन आएंगे, न ही आरजेएस आएंगे, पर हाँ तो सिर्फ सुपर हिट बैक टू बैक गाने आएंगे। मस्ती म्यूजिक कैफे कैफे कैफे कैफे कैफे
2: Every voice begins with a dream, a note that dares to fly. From Singapore to the world, Music Beyond Boundaries Season 4. Watch Music Beyond Boundaries only on Musti AVI, powered by Musti Media Network Singapore. For show timing and more, stay tuned to Radio Musti 24/7 Live. One world, one sound, one love. Music beyond boundaries, beyond borders, beyond time.
1: सुबह की शुरुआत हो थोड़ी सी न्यूज के साथ, थोड़ी सी गॉसिप के साथ और बहुत सारी मस्ती के साथ। क्योंकि जब ट्यूसडे आता है ना, तो आती है आरजे अंतरा की बातों की बारिश। योर डेली स्कूप ऑफ व्हाट्स हॉट, व्हाट्स वाइल्ड एंड व्हाट्स वर्थ नोइंग, सर्व्ड फ्रेश विद ग्रेट म्यूजिक एंड माय अनबीटेबल चार्म, यू सी। ट्यून इन टू मी ऑन मस्ती का मंत्रा विद आरजे अंतरा, हर ट्यूसडे सुबह 7 बजे सिर्फ रेडियो मस्ती 24/7 लाइव पर।

0: जनाब, सत श्री अकाल, गेम जय सिंगापुर, सारू जय।
1: नो नो टॉकिंग अलाउड, सिर्फ म्यूजिक बोलेगा। बैक टू बैक गाने ओनली ऑन मस्ती म्यूजिक कैफे,
2: रेडियो मस्ती 24/7 लाइव, अ पार्ट ऑफ मस्ती मीडिया नेटवर्क सिंगापुर। चेक

0: Your Musty Music Cafe is open. Freshly brewed beats served hot and back to back. अच्छा सुनो जरा, ग्रोसरी ना खत्म हो रही है तो 1 kg आटा,
1: हाँ जी जी,
0: आधा kg मसूर दाल,
1: जी जी,
0: काजू किशमिश, ओ हाँ, अरे वो नमकीन भी खत्म हो रहे हैं,
1: जी जी।
0: आर यू इवन लिसनिंग या ऐसे ही जी जी किए जा रहे हो?
1: अरे डार्लिंग, व्हाई टू फियर व्हेन जीजी मार्ट इज देयर।
0: क्या जी?
1: जी जी मार्ट, योर पर्सनल ग्रोसर। जस्ट लॉग ऑन टू ggmartonline.com, ग्रोसरी ऐड टू कार्ट करो, चेकआउट करो और ग्रोसरी एट योर डोरस्टेप।
0: वाजी, क्या बात जी।
1: ऑर्डर टुडे फ्रॉम जीजी मार्ट, योर पर्सनल ग्रोसर।
2: बड़े बड़े देशों में ऐसी छोटी छोटी बातें होती रहती हैं।
3: लाइफ थोड़ी बोरिंग लग रही है, टेंशन नहीं लेने का। टाइम फॉर योर थेरेपी सेशन, मस्ती का मंत्रा विद आरजे अंतरा, जहां न्यूज है फिल्मी, गॉसिप है स्पाइसी और म्यूजिक है फुल ऑन मस्त। बिकॉज हैप्पीनेस का असली मंत्र लाती है आरजे अंतरा, हर ट्यूसडे सुबह 7 बजे, ओनली ऑन रेडियो मस्ती 24/7।
4: मेरे करण अर्जुन आएंगे?
0: ना करण अर्जुन आएंगे, ना ही आरजेस आएंगे, पर हाँ तो सिर्फ सुपर हिट बैक टू बैक गाने आएंगे। मस्ती म्यूजिक कैफे, कैफे, कैफे, कैफे।
5: आजा प्यार की होड़ी ले,
6: दिल बोले तो
7: हार्ट हार्ट,
8: हाँ यार सौदा सौदा,
6: ओहो
5: दोनों डील कर सी ले,
6: टाइट टाइट, वेरी टाइट।

0: सिंगापुर बोर हो गए हो क्या? अब टेंशन और बोर्डम होने वाला है फुल ऑन डिसअपीयर,
1: क्योंकि आ रहा है मस्ती हैंगआउट विद आरजे मुग्धा। गॉसिप का ओवरलोड, एंटरटेनमेंट का धमाका और दुनिया भर की खबरों का तड़का।
0: सीधी न्यूज तो सब देते हैं, ये शो देता है टेढ़ी न्यूज विद सार्कैज़म की टॉपिंग और मस्ती की क्रीम। गारंटीड मूड होगा हाई, इमेजिनेशन होगी फ्लाई और आप हंसोगे बिन वाईफाई।
1: तो सिंगापुर गेट रेडी फॉर योर डेली लाफ्टर डोज। मस्ती हैंग आउट विद आरजे मुग्धा ओनली ऑन रेडियो मस्ती 24/7 लाइव।
0: फॉर शो टाइमिंग्स चेक आउट द रेडियो मस्ती 24/7 लाइव ऐप। आरजे मुग्धा के साथ गॉसिप भी, मस्ती भी, सार्कैज़म भी, सब कुछ सिर्फ मस्ती हैंग आउट।
2: Your Musty Music Cafe is open. Freshly brewed beats.

0: नाचे गया एग्जिट पर और गाने आ गए नॉनस्टॉप म्यूजिक नॉनस्टॉप मस्ती ओनली ऑन मस्ती म्यूजिक कैफे
1: रेडियो मस्ती 24/7 लाइव अ पार्ट ऑफ मस्ती मीडिया नेटवर्क सिंगापुर चेक इट आउट

0: करण अर्जुन आएंगे?
1: न करण अर्जुन आएंगे, न ही आरजेएस आएंगे, पर हाँ तो सिर्फ सुपर हिट बैक टू बैक गाने आएंगे। मस्ती म्यूजिक कैफे कैफे कैफे कैफे कैफे कैफे कैफे कैफे कैफे कैफे।
2: सम शोज डोंट जस्ट प्ले, दे स्टे विद यू, एंड व्हेन आवर लिसनर्स आस्क फॉर मोर We bring them back. Encore shows by popular demand. Relive the music, the moments, the magic. Only on Radio Masti 24/7. Check the app menu for Encore show timings.
3: Radio Masti 24/7 Live, a part of Masti Media Network Singapore.
1: शुरुआत हो थोड़ी सी न्यूज के साथ, थोड़ी सी गॉसिप के साथ और बहुत सारी मस्ती के साथ। क्योंकि जब ट्यूसडे आता है ना, तो आती है आरजे अंतरा की बातों की बारिश। योर डेली स्कूप ऑफ व्हाट्स हॉट, व्हाट्स वायरल एंड व्हाट्स वर्थ नोइंग, सर्व फ्रेश विद ग्रेट म्यूजिक एंड माय अनबीटेबल चार्म, यू सी। Tune in to me on Masti Ka Mantra with RJ Antara. Har Tuesday subah 7 baje, sirf Radio Masti 24/7 live.

0: Your musty music cafe is open. Freshly brewed beats served hot and back to back.
1: जब एक धुन से सांस का पता चल जाता था, जब एक मिस्ड कॉल से आवाज का पता चल जाता था, घिसी हुई वीडियो टेप्स पर बनी हमारी क्रिस्टल क्लियर यादें, समोसा पैटीज, फूटी लिमका, फ्लेम्स से लेकर स्लैम बुक्स तक, झूठी बॉटल से कोल्ड ड्रिंक पीने को इनडायरेक्ट किस समझने वाले दिन। योर डोज ऑफ 90s नॉस्टैल्जिया, मस्ती 90s मिक्सटेप विद आपकी 90s वाली अंतरा, थर्सडेज 11 AM ऑनवर्ड्स ओनली ऑन रेडियो मस्ती 24/7 लाइव।
2: बड़े बड़े देशों में ऐसी छोटी छोटी बातें होती रहती हैं।
3: लाइफ थोड़ी बोरिंग लग रही है, टेंशन नहीं लेने का। टाइम फॉर योर थेरेपी सेशन, मस्ती का मंत्रा विद आरजे अंतरा, जहां न्यूज है फिल्मी, गॉसिप है स्पाइसी और म्यूजिक है फुल ऑन मस्त। बिकॉज हैप्पीनेस का असली मंत्रा लाती है आरजे अंतरा, हर ट्यूसडे सुबह 7 बजे ओनली ऑन रेडियो मस्ती 24/7।
4: मेरे करण अर्जुन आएंगे?
5: ना करण अर्जुन आएंगे, ना ही आरजेस आएंगे, पर हाँ तो सिर्फ सुपर हिट बैक टू बैक गाने आएंगे। मस्ती म्यूजिक कैफे कैफे कैफे कैफे।

0: राज की बात बताऊं, मेरी आवाज कभी अच्छी थी ही नहीं।
1: अगर हम सबकी जानी पहचानी गोल्डन वॉइस के मालिक दी अमीन सयानी जी का ये कहना है, तो सोचिए आप भी अपनी आवाज को सबके दिलों तक कैसे ले जा सकते हैं। द RJ Academy एट मस्ती मीडिया नेटवर्क इज नाउ ओपन फॉर यू। That too with a hybrid model for your convenience. 12 hours of training per level. Flexible individual focused syllabus offered for 14 years and above. Selected trained voices to get an opportunity to host live on Radio Masti 24/7. Email a brief intro to info@radiomasti.com.sg requesting for application form.
2: Namaste behnor bhaiyo, main aapka dost Amin Sayani bol raha hoon.
1: Your Masti Music Cafe is open. Freshly brewed beats

0: We are Radio Masti 24/7 live, keeping you connected Bollywood style anywhere, anytime.
1: भैया जी बताओ ना, आप हो कौन?
2: मैं वो था जिसकी तबाही की गवाही अखबार का पन्ना बना देता था।

0: दस का बीस।
1: अरे अब बस 10 से दिल कहाँ भरेगा। मस्ती टॉप 20 लेकर रेणुका जो आने वाली है। टाइम टू रेज द बार। मस्ती टॉप 20 बॉलीवुड चार्ट बस्टर्स ऑफ द वीक फुल ऑन रेणुका स्टाइल। Friday evenings, 5 p.m. onwards, catch the OG rock star Renuka with the week's top chart busters. Musty Top 20, only on Radio Musty 24/7, the only live Bollywood radio across Southeast Asia since 2009.
2: Surprises की खान। जी हाँ, that is exactly what this show is all about. आइए 5:01 हो रहे हैं यहाँ पर और रेणुका हाजिर हो।
1: Must be top 20 Bollywood chart busters of the week, full on Renuka style.
2: भाई आवाज अब बिल्कुल ठीक है पिछले हफ्ते की बीमार सी नासाज सी तबीयत के बाद। हम आ बैठे हैं यहाँ पर आपसे मिलने के लिए ऑन अ ब्यूटीफुल फ्राइडे इवनिंग। भाई शुरुआत में ही कहना चाहूंगी कि अगर पीछे से कुछ शोर की आवाज है या कुछ हो तो हमको बताना। बहुत मतलब दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि यहाँ पर कुछ रेनोवेशन का काम चल रहा है हमारे स्टूडियो के बाहर थोड़ा दूर, लेकिन फिर भी हमारा स्टूडियो की जो कान है ना वो इतने

तेज है कि वो कहता है कि भैया दुनिया में कहीं भी कुछ काम हो रहा हो, शोर हो रहा हो, तो हम तक पहुंच जाता है। तो भाई उसी सेंसिटिव कानों के नाम, जी हाँ, आज का मस्ती टॉप चार्ट्स। आई होप यू एंजॉय इट डिस्पाइट एनी नॉइज विच माइट जस्ट कम इन। राइट, आई विल ट्राई टू स्विच ऑन द माइक ओनली व्हेन देयर इज नो नॉइज अराउंड मी, बट ऑन रेडियो मस्ती गाइज। चलिए शुरुआत करते हैं, पर्सनल प्रॉब्लम्स तो कहीं और डील करेंगे, फिलहाल के लिए एक ऐसा गाना जो आज टॉप चार्ट्स में नंबर 20 पर घुस बैठा है। मैं आपको यह बता सकती हूं कि आज के टॉप चार्ट्स बिल्कुल अलग हैं, इसलिए क्योंकि जो मेहमान मैंने पिछले दो हफ्ते बुलाए थे उनको आज मैंने आउट कर दिया है। जी हाँ, आई एम वेरी प्राउड टू से कि आज ये शो सिर्फ और सिर्फ मेरा है। सो ऑल दोज पीपल हु वर एंजॉयिंग मेरे मेहमान की आवाज, आप प्रस्थान कर सकते हैं यहाँ से, लेकिन ऑल दोज पीपल हु एंजॉय मेरी जान मेरे साथ रहना, तो मैं एब्सोल्यूटली यही रहूंगी 8 बजे तक।

0: हाल है?
1: ना, आज मेरे स्टूडियो में कोई मुसीबत नहीं है. समझने वाले समझ गए. लेकिन दिस इज द गाना विच हैज जस्ट एंटर्ड और ये आया है मैं वापस आऊंगा. पिछले हफ्ते तक 20 नंबर पर एक दूसरा ही गाना था जो कह रहा था मैं वापस आऊंगा. खैर, उसको हटा के ये वाला ट्रैक मैं वापस आऊंगा फिल्म से इस समय हम यहाँ पर एंट्री दे रहे हैं. आई टेक अ शॉर्ट म्यूजिकल ब्रेक हियर गाइस एंड कम बैक बिकॉज आज के मस्ती टॉप चार्ट्स में अलग ही बात होने वाली है. एंड आई विल टेल यू दैट इन जस्ट अ लिटिल बिट. स्टे ट्यून्ड. गुड इवनिंग. इट्स टाइम फॉर मस्ती टॉप 20 विद रेणुका.
2: ट्रेंडिंग सॉन्ग नंबर 20.

0: अच्छा सुनो जरा, ग्रोसरी ना खत्म हो रही है तो 1 kg आटा,
1: हाँ जी जी,
0: आधा kg मसूर दाल,
1: जी जी,
0: काजू किशमिश, ओ हाँ, अरे वो नमकीन भी खत्म हो रहे हैं,
1: जी जी,
0: आर यू इवन लिसनिंग या ऐसे ही जी जी किए जा रहे हो?
1: अरे डार्लिंग, व्हाई टू फियर व्हेन जीजी मार्ट इज देयर?
0: क्या जी?
1: जीजी मार्ट, योर पर्सनल ग्रोसर, जस्ट लॉग ऑन टू ggmartonline.com, ग्रोसरी ऐड टू कार्ट करो, चेकआउट करो और ग्रोसरी एट योर डोरस्टेप।
0: वाह जी, क्या बात जी,
1: ऑर्डर टुडे फ्रॉम जीजी मार्ट, योर पर्सनल ग्रोसर।
2: जब हमारा कोई शो होता है सुपर हिट तो आप कहते हैं और रेडियो मस्ती 24/7 कहता है क्यों नहीं। Presenting the encore of your favorite shows. Another day, another time. For your listening pleasure only. Because super hits deserve a repeat. Check out the encore show schedule on our app menu.
3: Only on Radio Musti 24/7 Live. A part of Musti Media Network Singapore.
4: Bollywood Flashback.

0: Radio Musty 24/7. Download Radio Musty 24/7 app to call us instantly or email, WhatsApp, text us from the app.
1: वैसे तो आई जस्ट हेट इट, आई हेट इट जब मुझे किसी को शिकायतें लगानी पड़ती हैं, लेकिन क्या है ना, जिंदगी में कभी कभी ऐसा क्षण आ ही जाता है कि मुझे लगता है यार शिकायत के बिना काम नहीं चलेगा.
2: दे आर फ्रेश, दे आर हॉट, दे आर स्पाइसी एंड दे आर हैपनिंग. जॉइन अस ऑन मस्ती.
1: अभी अभी बाहर बोलकर आई हूँ कॉन्ट्रैक्टर को कि भाई साहब ऐसा है कि थोड़े ये जो रेनोवेशन का काम है उसमें शोर जरा कम मचाए, हमारा लाइव शो चल रहा है भाई, मतलब क्या कर रहे हो आप. लेकिन ऑन रेडियो मस्ती 24/7 गाइस, ये परेशानी खैर सिर्फ मेरी है क्योंकि बाकी लोग तो यहाँ से जा चुके हैं शाम के टाइम पर, राइट. इट्स अ ब्यूटीफुल फ्राइडे इवनिंग गाइस एंड रेनुका इज राइट हियर टू मेक श्योर दैट यू गेट टू नो व्हाट आर द हॉटेस्ट एंड द बेस्टेस्ट गानास विच आर इन द मार्केट टूडे. जी हाँ, और इसी मार्केट की बात करते हुए यहाँ पर अगले गाने की तरफ चलते हैं हम और आप, विच इज
3: तू दिल है मेरा.
1: It's called मेरे हम नवा, जुबिन नौटियाल के साथ. सही पहचान रहे हैं आप, आजकल सारे नए नए गाने जी हाँ पहुंच रहे हैं यहाँ पर रेडियो मस्ती 24/7 पर. तो धुरंधर के गाने जिन जिन लोगों को पसंद है वो

0: मी टेल यू, धुरंधर के आज के टॉप 20 में बहुत ही कम गाने हैं। गेस कीजिए कितने गाने होंगे आज। And I'm so glad कि भाई कहीं ना कहीं से नए गाने आ रहे हैं, लोग कम्पीट कर रहे हैं, लोग बोल रहे हैं चलो भाई अब हटाओ लात मारो धुरंधर को, नए नए गाने लेके आते हैं। एंड दैट नए नए गानों के नाम है हमारा ये मस्ती टॉप चार्ट्स, जो कि आपकी सेवा में इस समय मैं लेकर आई हूँ ऑन रेडियो मस्ती। गाइज, आई एम गोना टेक अ शॉर्ट ब्रेक हियर ऑफ कोर्स एंड ऑल्सो इंट्रोड्यूस यू बीच ही में हमारा गाना नंबर 18 को। That's a beautiful track, isn't it? होप कि ये हमारा जो गाना है इसको 18 से कहीं ऊपर चढ़कर मौका मिले टॉप 10 में आने का। खैर वो तो जब होगा तब होगा, लेकिन फिलहाल के यहाँ पर आज नंबर 1 कौन सा होने वाला है? एनी गेसेस? रेडियो मस्ती 24/7 पर रेनुका विद यू।
1: ट्रेंडिंग सॉन्ग नंबर 19।

0: 40% off. 40% joy alukas.
1: 40% off. Oh my god. Let's go.
2: Offer aisa ki aap bhi khud ko rok nahi payenge. Joy Alukas laya hai the biggest jewelry sale. Flat 40% off on making charges for gold, diamond, polki and precious jewelry. And 100% value on diamond exchange. Offer valid till 14 June 2026. Visit 412-134 and 320 Serangoon Road. Joy Alukas, the world's favorite jeweler.
3: Hit us on the gram. It's Radio Musti 24/7. And don't forget to like our ever buzzing Facebook page, Radio Musti 24/7 Singapore.
4: Check it out.
5: एंड टू मेक अप फॉर ऑल द नॉइज इन द बैकग्राउंड गाइस, इतना बता सकती हूँ कि मैं आपको आज बॉलीवुड की खबरों के साथ में इतना ज्यादा अपडेट कर दूंगी, इतनी खबरें दूंगी, इतनी ज्यादा जानकारी देने वाली हूँ कि आपको लगेगा यार ये तो चलता फिरता एनसाइक्लोपीडिया है. जी हाँ, वही तो हूँ मैं.
6: From rocking the charts to ruling the weekly countdown, join us on Musti Top 20.
5: Encyclopedia na sahi, Bollypedia to keh hi sakte ho aaj ke din mein. Radio Musti 24/7, ji haan, hamara agla gana, jo maine thodi der pehle aapko bataya tha, Bhoot Bangla ke soundtrack se. Ji haan, soundtrack to theek hai, lekin Bhoot Bangla kya hai? Well, do major landmarks hamare Bharatiya cinema mein. Ek to tha 1965 ki classic, which was directed by Mehmood sahab, aur dusri द मैसिव 2026 की हॉरर कॉमेडी ब्लॉकबस्टर, जिसमें हमने देखा अक्षय कुमार को और डायरेक्शन ऑफ कोर्स प्रिय दर्शन की. क्या गाना है. तो भाई ऐसा है कि द फिल्म मार्क्स द मच एंटिसिपेटेड रीयूनियन ऑफ अक्षय कुमार एंड डायरेक्टर प्रियदर्शन. 14 साल, जी हाँ, एग्जैक्टली 14 ईयर्स के बाद में खट्टा मीठा उन्होंने साथ में करी थी 2010 में. और सीक्रेट डबल रोल, वेल आई एम गोइंग टू गिव यू अ स्पॉइलर गाइस, सो स्पॉइलर अलर्ट. जिसने नहीं देखी है अभी तक फिल्म और देखना चाहता है, वो मैं आपको बता सकती हूँ कि इस समय अक्षय कुमार जो है ना डबल रोल में है. और जो मेन एनिमेटेड डिमोनिक विलन है ना वधूसुर, वेल अलोंगसाइड हिज हीरो कैरेक्टर अर्जुन आचार्य, दोनों ही अक्षय कुमार है. ये पीपल जिन्होंने नहीं देखी है और उनके साथ में अभी अभी मैंने बता दिया ये पूरा का पूरा मिस्ट्री, तो भाई ऐसा है, कोशिश करना कि आप मुझे माफ कर पाए, लेकिन अगर ना कर पाए तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता. All the new ganas that you're listening to today, guys, I'll tell you more about them. But yes, फिलहाल के लिए हम गाना नंबर 17 की तरफ भी पहुंच गए हैं अभी अभी जो मैंने आपको सुनाया, और वो भी धुरंधर का नहीं है. Oh my God, I can't believe this is Musti Top Charts after the longest time. No ganas of Dhurandhar so far. Hi hi, आधे पौने घंटे में. No no.
3: Trending song number 18.

0: आम ले लो, ताजा मीठा आम ले लो, GGMartOnline.com से आम ले लो।
1: जब घर की याद आए GGMartOnline.com से अल्फांसो आम मंगाए। ऑर्गेनिक, केमिकल फ्री, स्ट्रेट फ्रॉम देवगढ़, रत्नागिरी एंड मोर। नाउ एट GGMart। ऑर्डर नाउ एट GGMartOnline.com और कॉल 8085657।
2: रेडियो मस्ती 24/7 लाइव पर मैं हूँ अंतरा आपके साथ।
3: मैं आरजे पर मस्ती मॉर्निंग शो पर आपके साथ।
4: लीजिए समर आ गया है लेकर यादों का कारवां।

0: की आवाज तो सुनी है, अब क्या आप अपनी आवाज अपने ही शो के जरिए हमारे लाखों लिसनर्स तक पहुंचाना चाहेंगे? स्टेज फियर को भगाना हो या पैशन को आगे बढ़ाना हो, इट्स इम्पोर्टेंट टू स्टार्ट विद द राइट ट्रेनिंग. The RJ Academy at Masti Media Network is now open for you. That too with a hybrid model for your convenience. 12 hours training per level, flexible individual focused syllabus offered for 14 years old and above. Selected trained voices to get an opportunity to host live on Radio Masti 24/7. Email a brief intro to info@radiomasti.com.sg requesting for an application form.
1: Good morning.
2: Trending song, number 17.

0: आज आपको अवार्ड पे अवार्ड मिलेगा, प्राइज पे प्राइज मिलेगा, अगर आपने मुझे बता दिया कि आज के पूरे शो में कितने धुरंधर के गाने हैं। जी हाँ, ये बता सकती हूँ मैं आपको कि एनीबडी यू कैन गेस दैट ना, मुझे लगेगा कि आप मेरे सिस्टम को यहाँ से कहीं से भी देख सकते हैं। ओ माय गॉड, दैट इज स्पूकी। दे आर फ्रेश, दे आर हॉट, दे आर स्पाइसी एंड दे आर हैपनिंग। जॉइन अस ऑन मस्ती। जॉइन तो आप कर ही चुके हैं, सो आपका स्वागत। जी हाँ, रेडियो मस्ती 24/7 पर रेणुका विद यू। मस्ती टॉप चार्ट्स में अभी अभी आपने गाना सुना 17 नंबर पर, तेरा हो जाऊं। व्हाट अ पॉपुलर रोमांटिक गाना फ्रॉम बॉलीवुड रोमांटिक कॉमेडी फिल्म जिसका नाम है जवानी तो इश्क होना है। जी हाँ, डेविड धवन की डायरेक्शन और इसमें वरुण धवन और पूजा हेगड़े को देखा गया है। और इस गाने के बारे में अगर मैं आपको एक बहुत ही इंटरेस्टिंग सी बात बताऊं तो वो ये है कि प्लेबैक सिंगर जोनीता गांधी, जी हाँ, उन्होंने बताया कि उन्होंने ये गाना रिकॉर्ड किया है पूरा का पूरा वोकल ट्रैक फॉर तेरा हो जाऊं रिमोटली फ्रॉम अ होटल रूम जब वो एक म्यूजिक टूर पर थी। कैन यू बिलीव इट? वाओ, तो भाई रिमोटली काम कर सकते हैं लोग। फॉर ऑल दोज पीपल हु से नहीं नहीं, हम तो आपके स्टूडियो में आकर देखना चाहते हैं आपको सारा काम करते हुए, तो लेट मी टेल यू, अगर ये नॉइज बैकग्राउंड में मुझे लड़ाइयां करके रोकनी पड़ी फॉर द नेक्स्ट फ्यू वीक्स, तो मैं डेफिनेटली रिमोटली काम करूंगी। बट वेल, हमारे धंधे में थोड़ा सा रिमोटली में एक्शन थोड़ा कम हो जाता है। बट एनीवे, ऑन रेडियो मस्ती गाइस, साथ में आपको ये भी बताना चाहूंगी कि एक्टर स्टेबन बेन, जिन्होंने गाया है मेल वोकल्स अलोंग विद जोनीता गांधी, जिन्होंने होटल रूम से गाया है, ही इज मैरिड टू नुपुर सानन। अरे, अपनी कृति सानन की बहन यार, अभी तो शादी हुई है थोड़े दिन पहले, तो भाई इसीलिए प्रमोशन कौन कर रहा है, साली जी कर रही है। कितना प्यारा लग रहा है मुझे ये पूरा पूरा घर घर खेलने का पंगा। वेल, फाइनली गान नंबर 16, जी हाँ, मेंटेन किया है इसने अपनी जगह को पिछले हफ्ते के सामने। दिस इज मोनिका माय डार्लिंग एंड एज आई ऑलवेज से, गलत, टोटली गलत, क्योंकि है तो रेणुका माय डार्लिंग।
1: मस्ती टॉप 20 बॉलीवुड चार्ट बस्टर्स ऑफ द वीक, फुल ऑन रेणुका स्टाइल।

0: तो भाई एक फिल्म जो कि आने वाली है उसका नाम है बंदर। जी हाँ, बंदर। आई थिंक आई एम प्रोनाउंसिंग इट एब्सोल्युटली राइट। दे आर फ्रेश, दे आर हॉट, दे आर स्पाइसी एंड दे आर हैपनिंग। जॉइन अस ऑन मस्ती टॉप 20। अनुराग कश्यप उसको डायरेक्ट करेंगे और जो बंदर फिल्म है इट ब्लेंड्स डार्क थ्रिलर एलिमेंट्स विद डीप अनकन्वेंशनल रोमांस। और कौन है उसमें? बॉबी देओल है। जी हाँ, बॉबी देओल बंदर बन के नहीं, मतलब बंदर में आएंगे, दिखेंगे। सानिया मल्होत्रा है, सबा आजाद है और सपना पाबी है। अब देखने की बात ये है कि जो हमारा अगला गाना है, जी हाँ, इसको हम कहते हैं मिडनाइट एंथम, क्योंकि बड़ा मूडी ब्लेंड है भाई ऑफ नियॉन ड्रेंच्ड विजुअल्स इन द वीडियो, ओशन साइड एस्थेटिक्स एंड अ स्लो बर्निंग मेलोडी जो मिरर करता है द थीम ऑफ कॉम्प्लेक्स इन एस्केपेबल लव। और साथ ही साथ में जो साउंड ट्रैक है ना, इट ऑल्सो फीचर्स अ ट्रैक नेम्ड कम ऑन बेबी जो कि आयान अग्निहोत्री और पायल देव ने बनाया था। 1970s के हिंदी ट्रैक कम ऑन बेबी, दिल किसको वाले साउंड ट्रैक को कॉपी नहीं कहेंगे, वहीं से इंस्पायर होके। लेकिन ये कौन सा गाना है? वेल, आई एम गोना प्ले द हुक राइट नाउ फॉर यू गाइस एंड आई डू होप यू एंजॉय। गाना नंबर हमारा कौन सा हुआ, कौन सा हुआ? 15। जी हाँ, क्यों ये मजा आएगा या नहीं आएगा ये तो हमें अगले सप्ताह पता लगेगा, जब ये गाना यहाँ रहेगा या नहीं रहेगा। We're gonna find that out guys, but फिलहाल के लिए, जी हाँ बिल्कुल, मैं यहाँ से आपका अगले घंटे में इंतजार करती हूँ। तब तक आप सुनिए गाना नंबर 15। और हाँ, जवाब देना मत भूलिएगा कि आज के हमारे शो में धुरंधर के कितने गाने हैं। चाहे आप धुरंधर 1 कह लीजिए या आप धुरंधर द रिवेंज कह लीजिए, मिला के दोनों फिल्मों में से कितने गाने हैं टॉप 20 में? आई एम वेटिंग। 9151896 3।
1: हिट इज ऑन द ग्राम, इट्स रेडियो मस्ती 24/7 एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक आवर एवर बजिंग फेसबुक पेज रेडियो मस्ती 24/7 सिंगापुर। चेक इट आउट। Trending song number 15.

0: राज की बात बताऊं, मेरी आवाज कभी अच्छी थी ही नहीं।
1: अगर हम सबकी जानी पहचानी गोल्डन वॉइस के मालिक दी अमीन सयानी जी का ये कहना है, तो सोचिए आप भी अपनी आवाज को सबके दिलों तक कैसे ले जा सकते हैं। द आरजे एकेडमी एट मस्ती मीडिया नेटवर्क इज नाउ ओपन फॉर यू। That too with a hybrid model for your convenience. 12 hours of training per level. Flexible individual focused syllabus offered for 14 years and above. Selected trained voices to get an opportunity to host live on Radio Masti 24/7. Email a brief intro to info@radiomasti.com.sg requesting for application form.
2: Namaste behno aur bhaiyo, main aapka dost Amin Sayani bol raha hoon.
3: 40% off, 40% joy alukas,
4: 40% off, oh my god, let's go,
5: offer aisa ki aap bhi khud ko rok nahi payenge. Joya Lucas laya hai the biggest jewelry sale. Flat 40% off on making charges for gold, diamond, polki and precious jewelry. And 100% value on diamond exchange. Offer valid till 14 June 2026. Visit 412-134 and 320 Serangoon Road. Joya Lucas, the world's favorite jeweler.
6: Hollywood Flashback.

0: They are fresh. They are hot. They are happening. From rocking the charts to ruling the countdown. Yes, Musti Top 20. Pumping up Friday evenings, 5 p.m. onwards. The latest and the brightest. The week's top chart busters. Musti Top 20. Only on Radio Musti 24/7 Live. The only live Bollywood radio across Southeast Asia since 2009.
1: आइए आइए, आप ही का इंतजार. जी हाँ बिल्कुल, यहाँ पर कॉफी का मेरा सेकंड कप चल रहा है और हमारा यहाँ पर शो का सेकंड आवर चल रहा है. वेलकम टू मस्ती टॉप चार्ट्स विद रेनुका.
0: दे आर फ्रेश, दे आर हॉट, दे आर स्पाइसी एंड दे आर हैपनिंग. जॉइन अस ऑन मस्ती.
1: इट्स द 22nd ऑफ मई 2026 एंड यू आर राइट. मेरा आज का सवाल बस छोटा सा है कि धुरंधर के कितने गाने आज हमारे पूरे 3 घंटे में चलने वाले हैं. अगर आप सही जवाब दे देते हैं तो प्रॉमिस मेरी तरफ से कि आपको मजा आ जाएगा जो हम आपको प्राइज देंगे, ठीक है ना. फिलहाल के लिए किसी का भी सही जवाब नहीं आया, बट दैट्स ओके, टेक योर टाइम, आई स्टिल हैव एन आवर. अच्छा, अब ऐसा है कि दिल वाले चोर, जी हाँ, जो हमारा अगला गाना है, विच इज एक्चुअली प्लेइंग ऑन नंबर
2: 14.
1: ओए होए होए, जिन्नी सोनी तू लगदी है किसी और नू, ना लगे. यही बात यहाँ पर. अगेन अनदर ट्रैक, अ न्यू ट्रैक एंटरिंग टॉप चार्ट्स दिस वीक. बड़ा ही मेजर रोमांटिक गाना है ये, पति पत्नी और वो दोस्त से, जी हाँ, जिसमें है हमारे आयुष्मान खुराना और सारा अली खान. कहा तो ये भी जा रहा है कि सारा अली खान इज डूइंग अ मच बेटर जॉब देन आयुष्मान इन दिस फिल्म. भाई मेरा कहना ये है कि अगर आपने नहीं देखी है तो देख लो, क्योंकि मैं भी कल देखने जा रही हूँ. ऑलराइट, अब ऐसा है कि ये जो ओरिजिनल गाना है ना, इसको कंपोज किया रोचक कोहली ने एंड इट हैज़ बीन संग बाय द पावर हाउस डुओ ऑफ श्रेया घोषाल एंड आदित्य रिखारी. कुमार ने लिखा है इसके लिरिक्स. लेकिन सबसे बड़ी बात ये कि भाई फिल्म के रिलीज होने से पहले आयुष्मान खुराना जो है ना, उन्होंने कोलैबोरेट किया रोचक कोहली के साथ में टू रिकॉर्ड द सोलफुल रिप्राइज्ड वर्जन एज वेल अपनी आवाज में. ओए होए होए, तो अब ऐसा है भाई कि सुनते हैं ये वाला गाना नंबर 14.

0: 14 पर एंड फॉलोड बाय नंबर 13। नए का जमाना आ चुका है क्योंकि ये वाला गाना नंबर 10 पे था पिछले हफ्ते और मजे से 13 पर गिर के पहुंचा है, लेकिन फिर भी काफी हंगामा मचा रहा है। फ्राइडे इवनिंग के लिए बहुत ही मस्त गाना है ये, रेडियो मस्ती 24/7 पर। जी हाँ, लेट्स टेक अ शॉर्ट ब्रेक एंड ये दोनों के दोनों गाने बैक टू बैक प्लेइंग ओनली फॉर यू। इट्स मस्ती टॉप चार्ट्स, रेडियो मस्ती 24/7।
1: Trending song number 14.

एंड फॉर ऑल दोस पीपल जिनको लग रहा है भाई बड़ा मिस कर रहे हैं आज धुरंधर का साइड है, साइड भी नहीं चल रहा. यू आर सो राइट, इट इज सो रिफ्रेशिंग गाइज नॉट टू बी प्लेइंग द सॉन्ग्स बैक टू बैक फ्रॉम जस्ट वन फिल्म, राइट. हाय हाय, क्या डिजास्टर था मस्ती टॉप चार्ट्स पर पिछले कुछ हफ्तों में. आई एम सो ग्लैड दैट वी हैव गॉट सम न्यू एंट्रीज हियर एंड क्वाइट अ फ्यू. From rocking the charts to ruling the weekly countdown, join us on Masti Top 20. Number 12 पर जो गाना आने वाला है ना, I tell you, I feel good. I feel so good. उसके बारे में बताती हूँ, लेकिन फिलहाल के लिए आपको धुरंधर का, जी हाँ, एक अपडेट देना चाहूंगी कि आज के दिन से, एब्सोल्युटली आज 22 मई से क्या होने वाला है. वेल, नेटफ्लिक्स इज ब्रिंगिंग धुरंधर रॉ एंड अनदेखा टू ऑडियंसेस अक्रॉस द ग्लोब. जी हाँ, जहां पर दे आर डाइविंग डीपर जो कवर्ट ऑपरेशन हुए, अनटोल्ड ट्रूथ थे या हाई स्टेक एक्शन थे. तो भाई क्या स्टाइल में आदित्य धर ने ये पक्की बात करी है कि भाई थिएटर पे देखा है, शाबाश. अब ऐसा ना हो कि आप ओटीटी पर ना देखें, क्योंकि हम नई बातें ओटीटी पर रिलीज कर रहे हैं. व्हाट एन अमेजिंग अमेजिंग अमेजिंग स्ट्रेटजी गाइस. सारा का सारा बॉलीवुड एक तरफ और आदित्य धर, भाई धर लिया तूने. अब ऐसा है कि ये जो धुरंधर है, ऑब्वियसली इट हैज स्टूड आउट फॉर इट्स कंपेलिंग कैरेक्टर, स्टोरी लाइन ग्रिपिंग है, साउंड ट्रैक है ओए होए, और साथ ही साथ में लार्जर देन लाइफ एक्सपीरियंस बड़े वाले स्क्रीन पर. जी, उसमें रणवीर सिंह को जब हमने देखा, जो कि बहुत लोगों को पसंद नहीं है जो हमारे साथ जुड़ते हैं हमारे शो पर, फिर भी मैसिव फुटफॉल एंड स्ट्रॉन्ग वर्ड ऑफ माउथ, जिसकी वजह से इट हैज बिकम द मोस्ट टॉक्ड अबाउट रिलीज ऑफ द ईयर. और अब ओटीटी पर भी उतनी ही मोस्ट टॉक्ड अबाउट. अब आप समझे मुझे क्यों अच्छा लग रहा है इस गाने को. फोर्सफुली मेरे ही शो पर नंबर वन पे रखा गया था. जब वो मेहमान आए थे ना घुसबैठिया बनके, तो फिर मैंने कहा नहीं नहीं, ये गाना जा रहा है आज नंबर 12 पर. और ये गाना है मस्ती सॉन्ग ऑफ द आवर. जानते हैं क्यों? आई फील गुड. नंबर वन जो मेरे शो पर जबरदस्ती रखा गया था, वो आज 12 नंबर पर है. एंड आई फील गुड रेडियो मस्ती 24/7 पर. समझने वाले समझ गए, जो ना समझे वो मुझे कॉन्टेक्ट करे, समझा दूंगी. इट्स टाइम फॉर मस्ती सॉन्ग ऑफ द आवर.

0: अच्छा सुनो जरा, ग्रोसरी ना खत्म हो रही है तो 1 kg आटा,
1: हाँ जी जी,
0: 1/2 kg मसूर दाल,
1: जी जी,
0: काजू किशमिश, ओ हाँ, अरे वो नमकीन भी खत्म हो रहे हैं,
1: जी जी।
0: आर यू इवन लिसनिंग या ऐसे ही जी जी किए जा रहे हो?
1: अरे डार्लिंग, व्हाई टू फियर व्हेन जीजी मार्ट इज देयर।
0: क्या जी?
1: जीजी मार्ट, योर पर्सनल ग्रोसर। जस्ट लॉग ऑन टू ggmartonline.com, ग्रोसरी ऐड टू कार्ट करो, चेकआउट करो और ग्रोसरी एट योर डोरस्टेप।
0: वाह जी, क्या बात जी।
1: ऑर्डर टुडे फ्रॉम जीजी मार्ट, योर पर्सनल ग्रोसर।
2: रेडियो मस्ती 24/7 लाइव पर मैं हूँ अंतरा आपके साथ।
3: मैं आरजे अनु पर मस्ती मॉर्निंग शो पर आपके साथ।
4: लीजिए, समर आ गया है, लेकर यादों का कारवां।
5: आपने इनकी आवाज तो सुनी है, अब क्या आप अपनी आवाज अपने ही शो के जरिए हमारे लाखों लिसनर्स तक पहुंचाना चाहेंगे? स्टेज फियर को भगाना हो या पैशन को आगे बढ़ाना हो, इट्स इम्पोर्टेंट टू स्टार्ट विद द राइट ट्रेनिंग। The RJ Academy at Masti Media Network is now open for you. That too with a hybrid model for your convenience. 12 hours training per level, flexible individual focus syllabus offered for 14 years old and above. Selected trained voices to get an opportunity to host live on Radio Masti 24/7. Email a brief intro to info@radiomasti.com.sg requesting for an application form.
6: Good morning.
7: Trending song, number 12.

0: And guys, in case you're wondering, Shahi Maharani North Indian Restaurant में क्या हो रहा है, so let me tell you very quickly, मस्ती टॉप चार्ट्स तो चल ही रहे हैं, लेकिन चार्ट्स के साथ में चाट खाने का जो मजा है, ओए होए, उसके बारे में बता दूं क्या थोड़ा सा?
1: From rocking the charts to ruling the weekly countdown, join us on Masti Top 20.
0: And जिस तरह से आपको जोश में रखते हैं हम मस्ती टॉप 20 पर, उसी तरीके से बहुत ही जोश में रहने वाले हैं आप अगर जाएंगे आप शाही महारानी नॉर्थ इंडियन रेस्टोरेंट. क्यों? क्योंकि वो 25 साल कंप्लीट कर रहे हैं रैफल सिटी में, और इस टाइम आपको थोड़ा मतलब पार्टी देना चाहते हैं वो. तो उनकी जो मेन डिशेज है ना, 6 की 6 जो मेन डिशेज है वेज एंड नॉन वेज, वो आपके लिए $25 में सर्व करना चाहते हैं. ऑफकोर्स नॉर्मल प्राइस इज मच हायर, लेकिन अगर आप अब से लेके 14 जून तक जाएंगे तो यू विल बी एबल टू एंजॉय दोज 6 डिशेज विच आर अमेजिंग. मतलब वो 6 डिशेज आप उनके वेबसाइट पर जाके देखिए www.shahimaharani.com पर, और आपको इस प्रमोशन के बारे में अच्छे से पता लग जाएगा. जाइए और जरा उनको उनकी 25th एनिवर्सरी पर विश भी करके आइए. जी, उनकी भी यही खासियत है कि खाना हमेशा बेहतरीन ही रहता है. And this is the Ghana which is coming up next on number 11. Ji haan, Khasiyat, the third single released Bollywood romantic drama film Chand Mera Dil Se. Of course, isme dekhe gaye hain Ananya Pandey aur Lakshya Lalwani. Dono hi engineering students ka kirdar nibha rahe hain, Arav aur Chandani. And Sachin Jigar ka music hai, Amitabh Bhattacharya ke lyrics hai, and of course the playback singers are Raghav Chaitanya and Jonita Gandhi. Jonita Gandhi to chhai hui hai. Ab aap sochiye, bada hi matlab bada hi pyara sa gana hai. I really like it. Suniyega zarur. Aur ye hai number 11 par, isne bade bade dhurandharon ko piche choda hai, to definitely isme koi to baat hogi. Tell me what you think about it, guys. Coming up next on Radio Masti 24/7, Masti Top Charts with Renuka.
2: Trending song, number 11.

0: hit us on the gram. It's Radio Musty 24/7. And don't forget to like our ever-buzzing Facebook page, Radio Musty 24/7 Singapore.
1: Check it out.
2: और अगर आपको वो गाना पसंद है, तुम ही हो बंधु सखा, तुम ही हो, है ना? नहीं नहीं, मैं प्रेयर और डिवोशनल आवर की बात नहीं कर रही हूँ. आई एम टॉकिंग अबाउट कॉकटेल के साउंडट्रैक से. क्या बढ़िया गाना था ना, बढ़िया. मेरे गाने पे मत जाओ यार, उस असली गाने के बारे में सोचो. दे आर फ्रेश, दे आर हॉट, दे आर स्पाइसी एंड दे आर हैपनिंग. जॉइन अस ऑन मस्ती टॉप 20. तो फिर ये जो अगला गाना है नंबर 10 पर, जी हाँ, जिसने 15 से सीधा 10 पर जंप लगाई है, दैट गाना इज गोइंग टू रिमाइंड यू ऑफ द रोमांस, द ड्रामा, and of course the sun-soaked carefree beach festival vibe and the iconic, ji haan, yahi wale gaane ki yaad dilayega. ओए होए होए होए, मजा ही आ गया इस बीट को सुनने के बाद. एंड जस्ट इमेजिन दिस, शाहिद कपूर एंड ऑफ कोर्स द वेरी वेरी सेक्सी कृति सैनन. बात कर रही हूँ मैं कॉकटेल 2 की, जहाँ पर की होमी जानिया, जी हाँ, जिन्होंने 2012 की ओरिजिनल कॉकटेल भी डायरेक्ट करी थी, ही अलोंग विद द म्यूजिक, म्यूजिक के गुरु प्रीतम और लिरिक्स अमिताभ भट्टाचार्य के, जी हाँ बिल्कुल, जिन्होंने मिलकर तुम ही हो बंधु भी लिखा था. सो आप सोच सकते हैं कि अरिजीत सिंह की इस स्वैग वाली आवाज और आकाशा की अर्दी एनर्जेटिक कॉन्ट्रास्ट वाली आवाज के साथ में ये वाला गाना, कोरियोग्राफी ओए होए पूछिए मत, विजय गांगुली ने किया है. और जिसने किया था वो वाला गाना जिसका स्टेप मुझे आज तक नहीं आया, जी हाँ, शरारत की बात कर रही हूँ. आई बीन स्टिल ट्राइंग, और मैं दीवारों में बैंग कर रही हूँ. There's so much to tell you guys, but this is the Ghana number 9. चांद मेरा दिल, yet again, what an amazing takeover. जी हाँ, कहीं एक तरफ हैं पति पत्नी और हम दो वो दो, और साथ ही साथ में है चांद मेरा दिल, कॉकटेल 2. It's lovely to see a new playlist this evening on Radio Musty 24/7 Musty Top Charts पे. अगला गाने सुनने मत भूलिएगा, लेकिन उसके बाद में जो आने वाला है, ओए होए कमाल. Stay tuned.
0: Trending song number 10.

0: आम ले लो, ताजा मीठा आम ले लो, GGMartOnline.com से आम ले लो।
1: जब घर की याद आए, GGMartOnline.com से अल्फांसो आम मंगाए। ऑर्गेनिक, केमिकल फ्री, स्ट्रेट फ्रॉम देवगढ़, रत्नागिरी एंड मोर। नाउ एट GGMart। ऑर्डर नाउ एट GGMartOnline.com और कॉल 8085-6577।
2: Hit us on the gram. It's Radio Musti 24/7. And don't forget to like our ever buzzing Facebook page, Radio Musti 24/7 Singapore.
3: Check it out.
2: Trending song, number 9.

0: Some stories are easy to tell, पर कुछ कहानियाँ दिल के अंदर ही रह जाती हैं। एक छोटी सी बात पर पेरेंट्स से दूरी, एक प्यार जो कभी कह नहीं पाए, या वो करियर डिसीजन जो आज भी रातों की नींद चुरा लेता है। On मस्ती मीडिया नेटवर्क, we're opening a safe space. Dear मस्ती, दिल से, जहां आप लिख सकते हैं वो सब जो आप कह नहीं पाते। हर हफ्ते हम पढ़ेंगे आपके अनोनिमस लेटर्स, और कभी कभी एक गाना कह देता है वो बात जो लफ्जों में नहीं होती। बिकॉज समटाइम्स रेडियो पर बैठा एक अनजाना इंसान आपको दुनिया से ज्यादा समझ लेता है। सो राइट टू अस, डियर मस्ती, दिल से।
1: Radio Musti 24/7. Download Radio Musti 24/7 app to call us instantly or email, WhatsApp, text us from the app.
2: नए गाने, नई आवाजें, एब्सोल्युटली न्यू इंट्रोडक्शंस दिस इवनिंग ऑन रेडियो मस्ती 24/7। हमारा जो अगला गाना है, आप सोच भी नहीं सकते इसका बैकग्राउंड क्या है, बट आई इंसिस्ट कि आप सिर्फ सुने ही नहीं, सोचे भी उसके बारे में राइट अवे।
3: मस्ती टॉप 20 बॉलीवुड चार्ट बस्टर्स ऑफ द वीक, फुल ऑन रेणुका स्टाइल।
2: हेलो माय डार्लिंग्स फ्रॉम रेडियो मसी 24/7। जी हाँ, इस टाइम पर मैं हूँ आपके साथ। मैं कौन? अरे रेणुका, इससे ज्यादा शोर मचा के कोई क्या ही कहेगा। इस समय 7:45 हो रहे हैं, 7:45 मतलब 6:45, एंड आई एम गोइंग टू इंट्रोड्यूस गाना नंबर 8 टू यू राइट अवे। I love that. कौन है ये? कौन है ये लोग? Well, let me tell you, मस्कारा जो है, it's a popular track, मैं वापस आऊंगा, that's the film का नाम। Of course, romantic drama है, directed by इम्तियाज अली, तो ये फिल्म तो देखनी बनती है, absolutely। Well, साथ ही साथ मैं गानों के बारे में मैं कहूँ तो iconic trio, which is composer A.R. रहमान, lyricist इरशाद कमिल, and of course, director इम्तियाज अली, ये इन तीनों का 5वां प्रोजेक्ट है इकट्ठा। रॉकस्टार, हाईवे, तमाशा, अमर सिंह चमकीला, और अगर उन सब फिल्मों के गाने आपने सुने हैं और आपको पसंद आए हैं, तो लेट मी टेल यू दैट दिस इज एग्जैक्टली फ्रॉम द सेम टीम, तो बनता है ना सीधा एंट्री 8 नंबर पर। और ऑफ कोर्स मैं आपको बताना चाहूंगी कि आवाजें किसकी हैं, वेदांग रैना, जो कि लीड कैरेक्टर कीनू भी प्ले कर रहे हैं। इन्होंने अपना ही ट्रैक गाया है प्लेबैक में, एंड ऑफ कोर्स साथ ही में उनकी रॉ इनोसेंस और फीमेल वोकल्स। डेब्यू है नीलांजला घोष दस्तीदार। आप सोच सकते हैं ए आर रहमान की एक्चुअली टूरिंग टीम में ये गिटारिस्ट रही है, और जब ए आर रहमान ने इनका वाइब और इनका स्टाइल देखा, ब्रीजी एंड दिस एंड दैट, ही सेड यार ये वाला गाना तो गा दो मेरे लिए, एंड ओ माय गॉड, व्हाट एन अमेजिंग आउटकम। रेडियो मसी 24/7 पर हम सुनेंगे गाना नंबर 8। मैं मिलूंगी आपको अगले घंटे, और आप कहीं नहीं जाएंगे, ओके? ये मैं आपको कह रही हूं।
1: ट्रेंडिंग सॉन्ग नंबर 8।

0: राज की बात बताऊं, मेरी आवाज कभी अच्छी थी ही नहीं।
1: अगर हम सबकी जानी पहचानी गोल्डन वॉइस के मालिक दी अमीन सयानी जी का ये कहना है, तो सोचिए आप भी अपनी आवाज को सबके दिलों तक कैसे ले जा सकते हैं। द आरजे एकेडमी एट मस्ती मीडिया नेटवर्क इज नाउ ओपन फॉर यू। That too with a hybrid model for your convenience. 12 hours of training per level. Flexible individual focused syllabus offered for 14 years and above. Selected trained voices to get an opportunity to host live on Radio Masti 24/7. Email a brief intro to info@radiomasti.com.sg requesting for application form.
2: Namaste behno aur bhaiyo, main aapka dost Amin Sayani bol raha hoon.
3: Hollywood Flashback.

जगाती है कयामत कोई।

0: हम कल नहीं नहीं कल नहीं अब हम मंडे मिलेंगे 7 बजे विथ मोर मसाला मोर क्रिकेट मोर आईपीएल एक्शन ड्यूरिंग द वीकेंड ओनली ऑन रेडियो मस्ती 24/7 लाइव आईपीएल देखते रहो
1: द क्रिकेट कॉर्नर ऑन रेडियो मस्ती 24/7 लाइव
2: They are fresh. They are hot.
3: They are happening.
2: From rocking the charts to ruling the countdown. Yes, Musty Top 20. Pumping up Friday evenings, 5 p.m. onwards. The latest and the brightest. The week's top chart busters. Musty Top 20. Only on Radio Musty 24/7 Live. The only live Bollywood radio across Southeast Asia since 2009.
4: Josh राइट हमारे तीसरे घंटे में आपका स्वागत रेडियो मस्ती 24/7 पर जो लोग हमसे अभी फिलहाल हाल ही में जुड़ रहे हैं उनको मैं बताना चाहूंगी कि अगर हमारे स्टूडियो में आज बैकग्राउंड में थोड़ी सी नॉइज आए तो प्लीज समझ जाइएगा कि इस समय आफ्टर ऑफिस आवर्स रेनोवेशन के काम लोग करने शुरू कर देते हैं और उनको कितनी बार भी समझाओ परेशान करते चले जाते हैं बट ऑन रेडियो मसी गाइस आई प्रॉमिस टू स्टिक अराउंड विद यू टिल 8 इन द इवनिंग एंड इट्स अबाउट अभी तो घंटा शुरू ही हुआ है
2: दे आर फ्रेश दे आर हॉट दे आर स्पाइसी एंड दे आर हैपनिंग जॉइन अस ऑन मस्ती टॉप 20
4: सारी सारी स्पाइसी बातों के लिए अपार्ट फ्रॉम ऑफ कोर्स द हॉट गाने स्पाइसी गानों के लिए आप बिल्कुल सही जगह पे पहुंचे हैं और यहां पर मैं बिल्कुल तैयार हूं आज के दिन नए नए गाने आपको इंट्रोड्यूस करने के लिए यू बिलीव It or not, लेकिन अभी तक हम गाना नंबर 7 प्ले करने वाले हैं इस टाइम पर एंड वी हैड ओनली 2 ट्रैक्स ऑफ धुरंधर सो फार आए हाय रेडियो मस्ती 24/7 जी हाँ बिल्कुल आपको बताना चाहूंगी मैं कि अगला गाना हमारा जो है दैट वॉज देयर लास्ट टाइम एज वेल अब कौन से नंबर पे था मुझे कुछ ध्यान नहीं है आई थिंक 18 नंबर पर था इफ आई एम नॉट मिस्टेकन एंड इट सडनली मेड अ ह्यूज जंप मतलब कंगारू से भी दूर एंड इट हैज रीच्ड अंका नंबर 7 इट्स क्वाइट एन इंटरेस्टिंग सॉन्ग लेट्स हियर इट Wow!
5: Man more ni jidder nu jao, unde tak kende ne ji.
4: Wow! It's called Wow. है जवानी तो इश्क होना है जी हाँ इसी फिल्म का अभी आपने गाना एक और भी सुना था हमारे पिछले गानों में जी हाँ बिफोर द टॉप चार्ट्स रीच्ड दिस पॉइंट तो इसमें वरुण धवन मृणाल ठाकुर और पूजा हेगड़े जैसे कि मैंने कहा और साथ ही में डेविड धवन की डायरेक्शन अब बात यह है कि ये जवानी है जवानी तो इश्क होना है दैट इज लाइक द टाइटल मतलब काफी इंटरेस्टिंग टाइटल है आई मस्ट से लेकिन इसमें जो गाना है ये वाला गाना इट्स एक्चुअली इंस्पायर्ड बाय इश्क सोना है इन 1999 की जो फिल्म थी बीवी नंबर 1 एंड ऑफ कोर्स उस फिल्म को भी डेविड धवन ने डायरेक्ट किया था तो ऑफ कोर्स आज के दिन में अपना गाना तो यूज कर ही सकते हैं लेकिन उससे भी बड़ी बात यह है कि जो ये गाना है इसको लिखा कंपोज किया जावेद मोहसिन ने और 48 आवर्स के अंदर अंदर ये गाना बन गया था 10 दिन के अंदर अंदर जस्ट बिफोर द फिल्म्स फर्स्ट टीजर वेंट लाइव वरुण धवन ने 2 रातें जी हाँ बैक टू बैक रिकॉर्डिंग स्टूडियो में बिताई एंड आफ्टर दैट जस्ट टू सपोर्ट द म्यूजिक टीम ऑफ कोर्स गाए नहीं वो लेकिन दिस इज हाउ द ट्रैक रियली केम अबाउट इज दैट अमेजिंग गाइस द ट्रिविया दैट आई एम गिविंग टू यू टुडे इज डीप डीप रिसर्च के बाद में ऑन रेडियो मसी 24/7 टाइम फॉर अस टू लिसन टू गाना नंबर 7 स्टे tuned.
6: Hit us on the gram. It's Radio Musty 24/7. And don't forget to like our ever buzzing Facebook page. Radio Musty 24/7 Singapore.
7: Check it out.
6: Trending song. Number 7.
8: Say whoa!

0: अच्छा सुनो जरा, ग्रोसरी ना खत्म हो रही है, तो एक केजी आटा,
1: हाँ जी जी,
0: आधा केजी मसूर दाल,
1: जी जी,
0: काजू किशमिश, ओ हाँ, अरे वो नमकीन भी खत्म हो रहे हैं,
1: जी जी,
0: आर यू इवन लिसनिंग, या ऐसे ही जी जी किए जा रहे हो?
1: अरे डार्लिंग, व्हाई टू फियर व्हेन जीजी मार्ट इज देयर?
0: क्या जी?
1: जीजी मार्ट, योर पर्सनल ग्रोसर, जस्ट लॉग ऑन टू ggmartonline.com, ग्रोसरी ऐड टू कार्ट करो, चेकआउट करो और ग्रोसरी एट योर डोरस्टेप।
0: वाह जी, क्या बात जी,
1: ऑर्डर टुडे फ्रॉम जीजी मार्ट, योर पर्सनल ग्रोसर।
2: To Shahi Maharani for the special treat.
3: Thank you to Shahi Maharani for making this Mother's Day more special.
4: Thank you Shahi Maharani for comforting and mouth-watering flavors.
3: Thank you.
5: Thank you.
4: Thank you.
2: Thank you. We love you.
6: For 25 years, Shahi Maharani has brought royal North Indian flavors to Raffle City. Celebrate with 6 Shahi Signature Veg and Non-Veg dishes for just $25 plus. Served hot on your table. Now on till 30th June with minimum spend of $100 plus per table. 25 years of royal flavors. Only at Shahi Maharani North Indian Restaurant. Book now at shahimaharani.com or call 6235-8840. Terms and conditions apply.
2: It's time for
7: Masti Song of the Hour.

0: hit us on the gram. It's Radio Musty 24/7. And don't forget to like our ever-buzzing Facebook page, Radio Musty 24/7 Singapore.
1: Check it out.
2: जी, अब वो जो कॉन्टेस्ट था ना कि आपको बताने थे कि आज के पूरे 3 घंटों में कितने गाने धुरंधर 1 धुरंधर 2 के टोटल हैं, वो कॉन्टेस्ट अब यहाँ पर समाप्त किया जाता है, क्योंकि अब तो सोचना बड़ा आसान है. हेलो, इतने भी स्मार्ट मत बनो.
3: दे आर फ्रेश, दे आर हॉट, दे आर स्पाइसी एंड दे आर हैपनिंग. जॉइन अस ऑन मस्ती
2: टॉप चार्ट्स पर रेणुका आपके साथ. और यहाँ पर आपको मैंने कहा था कि अगर आप जीतेंगे आज, एक सही नंबर बता देंगे, तो आप जानते हैं कि हम आपको कितना एक प्यारा तोहफा देने वाले थे. अरे यार, लास्ट वीक इफ यू रिमेम्बर, हमारे शोज पर चल रहा था एक कॉन्टेस्ट, ठीक है, वो था जीजी मार्ट से ऑर्गेनिक मैंगोज. जी हाँ, जो कि उनके बड़े ही स्पेशल हैं. आई टेल यू, मेरे घर में कम से कम 8-9 डब्बे आ चुके हैं. ईच डब्बा हैज़ 12 मैंगोज, फ्रेश मैंगोज, रत्नागिरी एंड एज वेल एज देवगढ़. जी हाँ, अल्फोंसो. तो भाई, मैं तो ऐसा लग रहा है, पड़ोसियों को शक हो गया कि मैं धंधा कर रही हूँ, बिजनेस कर रही हूँ. जी हाँ, बिल्कुल, और कर भी रही थी, बिकॉज आई वॉज एक्चुअली टेलिंग माई फ्रेंड्स टू यू नो बाय. सो अब क्या है कि पिछले हफ्ते जितने हमारे विनर्स थे, पहले तो उनको बड़ा शक हुआ कि यार, हमने जब उनको लिखा कि आप मैंगोज जीते हैं, तो उन्होंने कहा आर यू श्योर ये स्पैम नहीं है. हमने कहा नहीं जी नहीं, एड्रेस दे दो और आपके घर पहुंच जाएंगे मैंगोज. तो पहुंच गए सबके, एंड आई टेल यू, ईच वन ऑफ देम हैज रिटन सम अमेजिंग स्टफ टू अस. सो गाइज, इफ यू हैव नॉट ऑर्डर्ड ggmartonline.com, और अगर आपको 10% डिस्काउंट चाहिए तो NEW10, न्यू 10. जी हाँ, क्योंकि आप नए होंगे ना वहां पर, सो न्यू 10 अगर आप ये डालेंगे निकलने से पहले, चेकआउट करने से पहले, तो आपको 10% डिस्काउंट भी मिलेगा. एंड यू हैव टू हैव द मैंगोज. या इंडियन मैंगोज, व्हाट या, उसके अगेंस्ट कुछ खड़ा होता है क्या? कोई ना, डांस का स्टेप नहीं भी आया मुझे, लेकिन इस गाने को मेरे से दूर कोई नहीं कर सकता. दिस इज कमिंग ऑन गाना नंबर 6. जी हाँ, और ये है ऑफ कोर्स धुरंधर के साउंडट्रैक से, फॉलोड बाय गाना नंबर 5. Quite interesting guys, because ये वाला गाना था 17 नंबर पर पिछली बार. जी हाँ, 17 से सीधा 5 पे छलांग, इसे कहते हैं सॉलिड प्रमोशन. रेडियो मस्ती 24/7, we're going to be listening to these two gaanas back to back, and I'll be back with 4-3-2-1 नंबर पर. कौन सा है आज, बताओ बताओ.
0: Trending song number 6.

0: हाँ तो भाई, अब स्ट्रेसफुल वाली सिचुएशन में पहुंच चुके हैं हम। जी हाँ, 7:32 यहाँ पर रेडियो मस्ती 24/7 पर आप और हम जुड़े हैं। जी हाँ, ऑन मस्ती टॉप चार्ट्स, और मस्ती टॉप चार्ट्स पर गाने हो चुके हैं अब तक 5 नंबर तक। रह गया है 4, 3, 2, 1।
1: From rocking the charts to ruling the weekly countdown, join us on Masti Top 20.
0: आप ये सोचिए कि suddenly एक नया गाना आता है और नंबर 4 पर जंप लगाता है, क्या कहेंगे आप उसको? हम तो कहेंगे धुरंधर का भी बाप है वो, है ना? नहीं, well, this gana somehow has become extremely popular in the past week. जी हाँ, तो भाई अब ऐसा है कि इसको हम इज्जत कैसे ना दें। अब ये नई फिल्म है वेलकम टू द जंगल, जी हाँ, और तीसरी इंस्टॉलमेंट है ऑफ वेलकम। याद है आपको दैट कॉमेडी फ्रेंचाइज, अहमद खान की डायरेक्शन। इस फिल्म में मेजर मेजर मेजर कास्ट है। अब मैं किस किस का नाम लूँ, लेट मी टेल यू, अक्षय कुमार और रवीना टंडन 22 साल के बाद टिप टिप करते करते पास आ चुके हैं। एंड ऑफ कोर्स दे आर आल्सो, साथ में उनके कौन कौन है? वेल, देयर इज अनिल कपूर जो हमेशा होते हैं, मजनू भाई, नाना पाटेकर, उदय भाई, ये दोनों के दोनों नहीं है। उनको रिप्लेस किया है संजय दत्त और अरशद वारसी ने। Not bad, huh? That's quite a shocker. साथ ही साथ में 14वीं, जी हाँ, 14th फिल्म कोलैबोरेशन है ये बिटवीन अक्षय कुमार एंड सुनील शेट्टी। और हम तो जानते ही हैं कि मोहरा, हेरा फेरी, दे दनादन, ये सारे के सारे what amazing iconic partnership they have shared in the past. और क्या बताऊँ, मतलब सुनील शेट्टी ज्वाइन कर रहे हैं वेलकम यूनिवर्स फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम एज अ कोर कास्ट मेंबर। तो ये सारी चीज़ों के साथ में आपको बताना चाहूँगी कि हमारा जो गाना नंबर 4 है वो इसी फिल्म से है। जी हाँ, अचानक से उसने कहर मचाया है। वेलकम वेलकम वेलकम वेलकम वेलकम। जी नहीं, टू लेट टू वेलकम यू गाइस, बट डेफिनेटली वेलकम टू दिस गाना। रेडियो मस्ती 24/7, यू गोना लिसन टू वन अमेजिंग रेट्रो फॉलोड बाय गाना नंबर 4। तब तक आप मुझे बता सकते हैं नंबर 1 कौन सा है आज के दिन में, विल बी इंटरेस्टिंग।
2: बॉलीवुड फ्लैशबैक

0: रेडियो मस्ती 24/7 लाइव पर मैं हूँ अंतरा आपके साथ।
1: मैं आरजे अनु पर मस्ती मॉर्निंग शो पर आपके साथ।
2: लीजिए समर आ गया है लेकर यादों का कारवां।
3: आपने इनकी आवाज तो सुनी है, अब क्या आप अपनी आवाज अपने ही शो के जरिए हमारे लाखों लिसनर्स तक पहुँचाना चाहेंगे? स्टेज फियर को भगाना हो या पैशन को आगे बढ़ाना हो, इट्स इम्पोर्टेंट टू स्टार्ट विद द राइट ट्रेनिंग। The RJ Academy at Masti Media Network is now open for you. That too with a hybrid model for your convenience. 12 hours training per level, flexible individual focused syllabus offered for 14 years old and above. Selected trained voices to get an opportunity to host live on Radio Masti 24/7. Email a brief intro to info@radiomasti.com.sg requesting for an application form.
4: Good morning.
5: Trending song number 4.

0: Radio Musti 24/7. Download Radio Musti 24/7 app to call us instantly or email, WhatsApp, text us from the app.
1: All right, टाइम आ चुका है कि अब मैं आपको टॉप तीन गानों से मिलवा दूं। जी हाँ, और यहाँ पर टॉप तीन गानों में है हमारा एक नया गाना।
2: कार के बहाने कई बार
3: करते करते
2: हमने वही लगाया दिल, जहाँ दिल लगाना
1: जहाँ दिल लगाना मना था वहीं पर तो दिल लगता है। अनफॉर्चुनेटली और फॉर्चुनेटली, दैट्स द थ्रिल। इट्स कॉल्ड हमने वही लगाया दिल, नॉट वेड। एंड साथ ही साथ में ऑफ कोर्स हमारे बाकी दो गाने कौन से हैं?
2: गहरा हुआ।
1: गहरा इज साउंडिंग अ लिटिल स्टील, इजंट इट गाइस? फिर भी काफी बेहतरीन गाना। और तीसरा,
2: सारियां विसर गईया रामा वे केड़े पासे जाइए।
1: ओए होए, केड़े पासे जाइए सजना। जी हाँ, बिल्कुल, यू गेस्ट इट राइट गाइस। ये गाना पहुंच चुका है टॉप चार्ट्स में। पिछले हफ्ते बड़ी लड़ाइयों के बाद इसको नंबर 8 पे रखा गया था, लेकिन मैंने कहा नहीं, ये गाना टॉप 3 डिजर्व करता है। तो वेल, टॉप 3 तो गाने मैंने आपको बता दिए, आपको मुझे बताना है गाना नंबर 1 कौन सा होने वाला आज के दिन में। रेडियो मस्ती 24/7, रेणुका विद यू, मस्ती टॉप चार्ट्स। सोचो नंबर पहला कौन सा गाना। Stay tuned.
0: Trending song number 3.

0: तो चलिए इस बार देखिए ना, हमारा गाना जो बहुत ही ज्यादा कंट्रोवर्सी में था पिछले कुछ हफ्तों से, वो नंबर 3 पर पहुंच गया है। वेल आई कैन नॉट चीट विद यू गाइस, ऑब्वियसली एक गाना जो कि निकाला गया था टॉप चार्ट से और फिर उसको किसी तरीके से 8वीं सीढ़ी पर हम लेकर आए और अब उसको अचानक से नंबर 1 पे तो नहीं ला सकते ना। दैट इज दी ऑनेस्टी लेडीज एंड जेंटलमैन फ्रॉम रेणुका।
1: दे आर फ्रेश, दे आर हॉट, दे आर spicy and they are happening. Join us on Masti top 20.
0: A little too late to join guys in case you're joining now, kyunki ab to filhal ke liye hum gana number 2 aur 1 hi batane wale hain. हम क्यों बताएं, आप बैठकर सुनेंगे। जी हाँ, तो अभी मैंने कुछ देर पहले आपको 4-3 गाने बताए थे कि कौन से हैं 3-2-1, बस उसमें 3 तो साइड हो चुका है, अब 2 और 1 अगर आपको याद है तो बहुत बढ़िया बात है, नहीं याद है तो टू बैड बात है, लेकिन हम यही गाने चलाने वाले हैं। वेल द न्यू सॉन्ग दैट आई टोल्ड यू हैज जस्ट कम इन, ओ माई गॉड, आते ही नंबर 2 पर। कैसे कैसे पहुंच जाता है ये, मतलब सोच के देखिए। बट ऑन रेडियो मस्ती गाइज आई मस्ट टेल यू दैट ये गाना एक्चुअली डिजर्व करता है नंबर 2 पर सीधा या नंबर 1 पर सीधा आना। वेल इट्स अ वायरल ट्रैक, जिसे कहते हैं कि टोटली वायरल, वन ऑफ द 2 गानास, मंडल ब्रदर्स क्रिश और किशोर मंडल ने ये गाना गाया है। एक्चुअली पहले तो उनका रॉ अनफिल्टर्ड सोशल मीडिया वीडियो इतना ज्यादा पॉपुलर हो गया था, इंडियाज गॉट टैलेंट जो शो है उसके अंदर 6 साल का क्रिश, इनोसेंट रॉ वॉइस, और उनका जो बड़ा भाई है वो ऑफकोर्स किशोर, वेरी ट्रेन्ड एंड वेरी गुड वॉइस, दोनों के दोनों ने मिलकर जो ये गाना बनाया तो हमें तो हो गया प्यार।
2: कार के बहाने कई बार करते
0: ओए होए,
2: हमने वही लगाया दिल जहां दिल लगाना मना था।
0: I love it. It's from Pati Patni aur Wo Do. And this gana is supposed to be one of the 2 songs. Alright, that's going to play now. तो चलिए मैं यहाँ से निकलती हूँ इससे पहले कि मुझे यहाँ पर छितर पड़े आप लोगों से, क्योंकि गाना नंबर 1 के बाद जो यहाँ पर भरमार होती है मैसेजेस की, मैं भागती हूँ यहाँ से। बट रेडियो मस्ती 24/7 टाइम टू से माय गुडबाइज गाइस, आई होप यू एंजॉयड मस्ती टॉप चैट्स टुडे, आई एब्सोल्युटली डिड। एंड अगर आपको एनकोर सुनना है तो वेल संडे इवनिंग इज द राइट टाइम, 5 to 8 PM। फिलहाल के लिए हैव अ फैंटास्टिक वीकेंड, आई विल सी यू ऑन मंडे मॉर्निंग ऑन द मॉर्निंग शो। टेक केयर, बाय फ्रॉम रेणुका।
3: Trending song number 2.

0: रेडियो मस्ती 24/7 लाइव पर मैं हूँ अंतरा आपके साथ।
1: मैं आरजे अनु पर मस्ती मॉर्निंग शो पर आपके साथ।
2: लीजिए समर आ गया है लेकर यादों का कारवां।
0: आपने इनकी आवाज तो सुनी है, अब क्या आप अपनी आवाज अपने ही शो के जरिए हमारे लाखों लिसनर्स तक पहुँचाना चाहेंगे? स्टेज फियर को भगाना हो या पैशन को आगे बढ़ाना हो, इट्स इम्पोर्टेंट टू स्टार्ट विद द राइट ट्रेनिंग। The RJ Academy at Masti Media Network is now open for you. That too with a hybrid model for your convenience. 12 hours training per level, flexible individual focus syllabus offered for 14 years old and above. Selected trained voices to get an opportunity to host live on Radio Masti 24/7. Email a brief intro to info@radiomasti.com.sg requesting for an application form.
3: Good morning.
4: तो चलिए इस बार देखिए ना, हमारा गाना जो बहुत ही ज्यादा कंट्रोवर्सी में था पिछले कुछ हफ्तों से, वो नंबर 3 पर पहुंच गया है। वेल आई कैन नॉट चीट विद यू गाइस, ऑब्वियसली एक गाना जो कि निकाला गया था टॉप चार्ट से और फिर उसको किसी तरीके से 8वीं सीढ़ी पर हम लेकर आए और अब उसको अचानक से नंबर 1 पे तो नहीं ला सकते ना। दैट इज दी ऑनेस्टी लेडीज एंड जेंटलमैन फ्रॉम रेणुका।
5: दे आर फ्रेश, दे आर हॉट, they are spicy and they are happening. Join us on Masti Top 20.
4: A little too late to join guys in case you're joining now, kyunki ab to filhal ke liye hum gana number 2 aur 1 hi batane wale hain. हम क्यों बताएं, आप बैठकर सुनेंगे। जी हाँ, तो अभी मैंने कुछ देर पहले आपको 4-3 गाने बताए थे कि कौन से हैं 3-2-1 वर्सेस 3-2-7।
0: Tuned into Radio Masti 24/7 Live, keeping you connected anywhere, anytime, the Desi way.
6: Trending song.
7: Check it out. Number 1.

0: इफ वीकेंड वाज अ गाय?
1: वो आ गया, देखो वो आ गया।
0: इफ वीकेंड वाज अ गर्ल? इफ वीकेंड वाज अ फिल्मी डायलॉग?
2: स्वागत नहीं करोगे आप हमारा?
0: एंड इफ वीकेंड वाज एन ऐप?
3: रेडियो मस्ती 24/7 लाइव।
4: रेडियो मस्ती 24/7 लाइव।
5: रेडियो मस्ती 24/7 लाइव।
6: रेडियो मस्ती 24/7 लाइव।
0: How to make best of weekends that travel faster than light. Tune into our Musty Weekends on Radio Musty 24/7 Live, the perfect recipe for you to unwind, keeping body entertainment close to you, anywhere, anytime.

0: अच्छा सुनो जरा, ग्रोसरी ना खत्म हो रही है तो 1 kg आटा,
1: हाँ जी जी,
0: आधा kg मसूर दाल,
1: जी जी,
0: काजू किशमिश, ओ हाँ अरे वो नमकीन भी खत्म हो रहे हैं,
1: जी जी,
0: आर यू इवन लिसनिंग या ऐसे ही जी जी किए जा रहे हो?
1: अरे डार्लिंग व्हाई टू फियर व्हेन जी जी मार्ट इज देयर,
0: क्या
1: जी जी मार्ट योर पर्सनल ग्रोसर, जस्ट लॉग ऑन टू ggmartonline.com, ग्रोसरी ऐड टू कार्ट करो, चेकआउट करो और ग्रोसरी एट योर डोरस्टेप।
0: वाह जी क्या बात जी,
1: ऑर्डर टुडे फ्रॉम जीजी मार्ट योर पर्सनल ग्रोसर।
2: इट्स द बेस्ट ऑफ बॉलीवुड प्लेइंग ऑन रेडियो मस्ती 24/7 लाइव। हैव अ मस्ती भरा वीकेंड।

0: इफ वीकेंड वाज अ गाय,
1: वो आ गया, देखो वो आ गया।
0: इफ वीकेंड वाज अ गर्ल, इफ वीकेंड वाज अ फिल्मी डायलॉग,
2: स्वागत नहीं करोगे आप हमारा।
0: एंड इफ वीकेंड वाज एन ऐप,
3: रेडियो मस्ती 24/7 लाइव,
4: रेडियो मस्ती 24/7 लाइव,
5: रेडियो मस्ती 24/7 लाइव,
6: रेडियो मस्ती 24/7 लाइव।
0: How to make best of weekends that travel faster than light. Tune into our Musty Weekends on Radio Musty 24/7 Live, the perfect recipe for you to unwind, keeping body entertainment close to you, anywhere, anytime. Just make-

0: नए दिन की शुरुआत शांति और श्रद्धा के साथ। भक्ति, प्रेरणा और सुकून भरे गीत सुनिए रेडियो मस्ती 24/7 पर। मस्ती पे भक्ति सुबह 6 बजे।
1: इट्स द बेस्ट ऑफ बॉलीवुड प्लेइंग ऑन रेडियो मस्ती 24/7 लाइव। हैव अ मस्ती भरा वीकेंड।

0: बड़े बड़े देशों में ऐसी छोटी छोटी बातें होती रहती हैं।
1: छोटी छोटी बातें छोड़ो और बड़े बड़े हिट सुनो। आपके रिक्वेस्ट सी बनाएंगे शो का ब्लॉकबस्टर प्लेलिस्ट। रोमांटिक, फिल्मी, पार्टी वाइब्स सब मिलेगा यही के यही। व्हाट्सएप करिए हमारे ऐप के थ्रू या फिर डायरेक्ट सिंगापुर नंबर 9151896 पर। मस्ती वॉइस आपकी चॉइस।
2: ओनली ऑन रेडियो मस्ती 24/7 लाइव, अ पार्ट ऑफ मस्ती मीडिया नेटवर्क सिंगापुर।
3: चेक इट आउट।
4: Perfect recipe for you to unwind. Musty Weekends only on Radio Musty 24/7 Live.

0: इफ वीकेंड वाज अ गाय,
1: वो आ गया, देखो वो आ गया।
0: इफ वीकेंड वाज अ गर्ल, इफ वीकेंड वाज अ फिल्मी डायलॉग,
2: स्वागत नहीं करोगे आप हमारा।
0: एंड इफ वीकेंड वाज एन ऐप,
3: रेडियो मस्ती 24/7 लाइव,
4: रेडियो मस्ती 24/7 लाइव,
5: रेडियो मस्ती 24/7 लाइव,
6: रेडियो मस्ती 24/7 लाइव।
0: How to make best of weekends that travel faster than light. Tune into our Musty Weekends on Radio Musty 24/7 Live, the perfect recipe for you to unwind, keeping body entertainment close to you, anywhere, anytime.

0: You're tuned into Radio Masti 24/7 Live, keeping the world Bollywood entertained anytime, anywhere.
1: क्या बात है, क्या चीज है बेसा, क्या बात है, क्या चीज है बेसा।

0: 10 का 20 10 का 20 10 का 20 10 का 20।
1: अरे अरे अब बस 10 से दिल कहाँ भरेगा।
2: मस्ती टॉप 20 लेकर रेणुका जो आने वाली है। टाइम टू रेज द बार। रम्मा मस्ती टॉप 20 बॉलीवुड चार्ट बस्टर्स ऑफ द वीक फुल ऑन रेणुका स्टाइल। Friday evenings, 5 p.m. onwards, catch the OG rock star Renuka with the week's top chart busters. Musty Top 20, only on Radio Musty 24/7, the only live Bollywood radio across Southeast Asia since 2009. Weekend ka maza with the best of Bollywood playing only on Radio Musty 24/7 live.

0: टू रूलिंग द काउंटडाउन. ये है मस्ती टॉप 20 पंपिंग अप फ्राइडे इवनिंग्स 5 PM ऑनवर्ड्स. द लेटेस्ट एंड द ब्राइटेस्ट द वीक्स टॉप चार्ट बस्टर्स मस्ती टॉप 20 ओनली ऑन रेडियो मस्ती 24/7 लाइव. द ओनली लाइव बॉलीवुड रेडियो अक्रॉस साउथ ईस्ट एशिया सिंस 2009.
1: रात अकेली है
2: तो क्या हम तो

0: नाचने का मन है।
1: मेरा भी। आपके रिक्वेस्ट ही बनाएंगे शो को फुल ऑन पार्टी। व्हाट्सएप करिए हमारे ऐप के थ्रू या फिर डायरेक्ट सिंगापुर नंबर 9151896 पर। मस्ती वॉइस आपकी चॉइस।
2: Only on Radio Musti 24/7 Live, a part of Musti Media Network Singapore. Check it out.
3: रात अकेली है
4: तो क्या हम तो आपके

0: रात अकेली है तो क्या, हम तो आपके साथ हैं। जोश में रहो।
1: बिना फ्लाइट टिकट खरीदे दुनिया का चक्कर लगवाएगा कौन? पेपराजी से भी तेज गॉसिप्स आपको लाकर देगा कौन? क्या बात है, आप तो काफी स्मार्ट निकले। तो सुनिए, सालों से एक टक सिंगापुर तक आपको अपडेट रखने वाली आपकी आरजे नुपुर को मस्ती मॉर्निंग्स पर ट्यूसडे वेंसडे एंड थर्सडे को ओनली ऑन रेडियो मस्ती 24/7 लाइव। ये है मस्ती मॉर्निंग्स मेरी जान।
2: फॉर शो टाइमिंग्स चेक आउट द रेडियो मस्ती ऐप नाउ। जोश में
3: रहो। रात अकेली है
0: तो क्या, हम तो आप

Akshay Kumar. Let's take a selfie now.

0: रात अकेली है तो क्या, हम तो आपके साथ हैं। जोश में रहो।
1: मन्नू, लेट्स गो।
2: चलो। हाँ चले गए, प्रश्न ही उठता, मैं तो सो ही जाता।
1: अरे बाहर निकलो।
2: ये आप मुझे कहाँ ले आए?
1: ये आप बंद करो।
2: सॉरी।
1: टोकरी संभालो। जगह कैसी है?
2: बड़ी प्यारी जगह। मगर आपने तो कहा था कि तुमने तो कहा था कि कुछ काम वाम करने का है, यहाँ तो कुछ गाड़ी वाली भी नहीं दिखाई देती, मैं मरम्मत किसकी करूँगा?
1: अरे गाड़ी की मरम्मत के सिवा और कोई दूसरा काम नहीं हो सकता।
2: और भला क्या काम हो सकता है?
1: और बहुत से काम हो सकते हैं।
2: जैसे?
1: कर सकोगे?
2: मैं हर काम कर सकता हूँ।
1: सोच लो।
2: सोच लिया।
1: और अगर ना कर सकी तो?
2: हार मान जाऊंगा।
1: ऐसे नहीं, कोई शर्त होनी चाहिए।
2: क्या?
1: हाँ, अगर तुम हार गए तो ये टोकरी उठा के सारा दिन साथ घूमना पड़ेगा।
2: टोकरी?
1: मंजूर।
2: मंजूर। काम तो बताइए।
1: जरा सोच तो लूँ। वो देखते हो? वो?
2: हाँ।
1: क्या?
2: मुर्गी।
1: हाँ, पकड़ लाओ।
2: मुर्गी?
1: हाँ।
2: ये तो मेरे बाएं हाथ का काम है, अभी पकड़ता हूँ। ये लीजिए।

0: का फंडा फेल हो गया, मेरी मोहब्बत का बाप खत्म खेल हो गया।
1: अरे उल्लू की तुम, तुझे नहीं मालूम, अपने सवाल का जवाब ला, कुछ मत कर, कुछ मत कर, जा जा, जा उसके लिए 2 रुपए का गुलाब।

किसी लड़की की बाहों में झूल जा, दो चार दिन बाद उसको भूल जा। ए, और सुन,

0: और मी नहीं चलेगा। वैम बैम थैंक यू मैम नहीं चलेगा। वन नाइट स्टैंड नहीं चलेगा।
1: लिसन मैडम, तो क्या चलेगा?

0: नशा है। और गानों से मदहोश करने के लिए हम है ना,
1: रात अकेली है। जोश में रहो।
2: Yeah, wanna feel that? Come on, girl.

0: रात अकेली है,
1: रात अकेली है तो क्या हम तो

कहते हैं शादी करने का कोई सही वक्त नहीं होता, जब कर लो बस तभी से तुम्हारा बुरा वक्त शुरू हो जाता है। अदिति मेरे शेर मेरे चीते, तुझे कुछ साल अकेला क्या छोड़ा, तूने इतना बड़ा झोल कर दिया। बदतमीजी एक बीमारी है, ऐसी बीमारी जो धीरे धीरे वक्त के साथ बुढ़ापे में बदल जाती है। मैं कहता हूं जब तक बुढ़ापा नहीं आता थोड़ी बदतमीजी ही कर लेते।

0: इस वीकेंड वाज अ गाय,
1: वो आ गया, देखो वो आ गया।
0: इस वीकेंड वाज अ गर्ल, इस वीकेंड वाज अ फिल्मी डायलॉग,
2: स्वागत नहीं करोगे आप हमारा।
0: एंड इफ वीकेंड वाज एन ऐप,
3: रेडियो मस्ती 24/7 लाइव,
4: रेडियो मस्ती 24/7 लाइव,
5: रेडियो मस्ती 24/7 लाइव,
6: रेडियो मस्ती 24/7 लाइव।
0: How to make best of weekends that travel faster than light. Tune into our Musty Weekends on Radio Musty 24/7 Live, the perfect recipe for you to unwind, keeping body entertainment close to you, anywhere, anytime.

एक देहाती सर पे गुड़ की भेली बांधे लंबे चौड़े एक मैदान से गुजर रहा था। गुड़ की खुशबू सुन के भिन भिन करती एक छतरी सर पे मंडलाती थी। धूप चढ़ी और सूरज की गर्मी पहुंची तो गुड़ की भेली बहने लगी। मासूम देहाती हैरान था, माथे से मीठे मीठे कतरे गिरते थे और वो जीभ से चाट रहा था। मैंने देहाती, मेरे सर पे ये टैगोर की कविता भेली किसने रख दी?

सामने चूल्हा जल रहा है, धुआं आंखों में लग रहा है, जलन भी है आनंद भी है। बस आते ही होंगे, जल्दी से संध्या पूजा हो जाए। जानती है वो क्या कहेंगे।

0: सिंगापुर बोर हो गए हो क्या? अब टेंशन और बोर्डम होने वाला है फुल ऑन डिसअपीयर,
1: क्योंकि आ रहा है मस्ती हैंगआउट विद आरजे मुग्धा। गॉसिप का ओवरलोड, एंटरटेनमेंट का धमाका और दुनिया भर की खबरों का तड़का।
0: सीधी न्यूज तो सब देते हैं, ये शो देता है टेढ़ी न्यूज विद सार्कैज़म की टॉपिंग और मस्ती की क्रीम। गारंटीड मूड होगा हाई, इमेजिनेशन होगी फ्लाई और आप हंसोगे बिन वाईफाई।
1: तो सिंगापुर गेट रेडी फॉर योर डेली लाफ्टर डोज। मस्ती हैंग आउट विद आरजे मुग्धा ओनली ऑन रेडियो मस्ती 24/7 लाइव।
0: फॉर शो टाइमिंग्स चेक आउट द रेडियो मस्ती 24/7 लाइव ऐप। आरजे मुग्धा के साथ गॉसिप भी, मस्ती भी, सार्कैज़म भी, सब कुछ सिर्फ मस्ती हैंग आउट।
2: Perfect recipe for you to unwind. Musty weekends only on Radio Musty 24/7 Live.

0: इस वीकेंड वाज अ गाय,
1: वो आ गया, देखो वो आ गया।
0: इस वीकेंड वाज अ गर्ल, इस वीकेंड वाज अ फिल्मी डायलॉग,
2: स्वागत नहीं करोगे आप हमारा।
0: एंड इफ वीकेंड वाज एन ऐप,
3: रेडियो मस्ती 24/7 लाइव,
4: रेडियो मस्ती 24/7 लाइव,
5: रेडियो मस्ती 24/7 लाइव,
6: रेडियो मस्ती 24/7 लाइव।
0: How to make best of weekends that travel faster than light. Tune into our Musty Weekends on Radio Musty 24/7 Live, the perfect recipe for you to unwind, keeping body entertainment close to you, anywhere, anytime. Just

0: नए दिन की शुरुआत शांति और श्रद्धा के साथ। भक्ति, प्रेरणा और सुकून भरे गीत सुनिए रेडियो मस्ती 24/7 पर। मस्ती पे भक्ति सुबह 6 बजे।
1: 40% ऑफ, 40% जॉय आलुकास,
2: 40% ऑफ, ओह माय गॉड, लेट्स गो, लेट्स गो।
3: ऑफर ऐसा कि आप भी खुद को रोक नहीं पाएंगे। जॉय आलुकास लाया है द बिगेस्ट ज्वेलरी सेल, फ्लैट 40% ऑफ ऑन मेकिंग चार्जेस फॉर गोल्ड, डायमंड, पोलकी एंड प्रेशियस ज्वेलरी एंड 100% वैल्यू ऑन डायमंड एक्सचेंज। Offer valid till 14 June 2026. Visit 412-134 and 320 Serangoon Road. Joy Alukas, the world's favorite jeweler.
4: It's the best of Bollywood playing on Radio Masti 24/7.

0: आम ले लो, ताजा मीठा आम ले लो, GGMartOnline.com से आम ले लो।
1: जब घर की याद आए GGMartOnline.com से अल्फांसो आम मंगाए। ऑर्गेनिक, केमिकल फ्री, स्ट्रेट फ्रॉम देवघर, रत्नागिरी एंड मोर। नाउ एट GGMart। ऑर्डर नाउ एट GGMartOnline.com और कॉल 8085-6577।
2: Weekend ka maza with the best of Bollywood playing only on Radio Masti 24/7 live.

0: जब एक धुन से सांस का पता चल जाता था, जब एक मिस्ड कॉल से आवाज का पता चल जाता था, घिसी हुई वीडियो टेप्स पर बनी हमारी क्रिस्टल क्लियर यादें।
1: आई लव यू रसना।
0: समोसा पैटीज, फूटी लिमका, फ्लेम्स से लेकर स्लैम बुक्स तक, झूठी बॉटल से कोल्ड ड्रिंक पीने को इनडायरेक्ट।